प्रभु छोटन लाग नरक समझिए हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजिए तलोक नच रासुख मिष्टंग नच पुगरस मिष्टंग नच मिष्टंग सुख माया मिष्टंग सा संग हर नानक दह मिष्टंग प्रभ दर्शन लगड़ा सो ने हो मन मजाहू रत्या विदड़ो सा थोक नानक मिठा सो तनी पौड़ी हर बिन कछू न लाग गई भगतन को मीठा आन स्वासा फीकया कर निरनौ डीठा अज्ञान परम दो कटया पुर पय बसीठा चरण कम मन बेदया जो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु फिर से सब झूठा त्रोक तिगत जलंग न जीव मीनंग न त्याग चात्रक मेघ मंडल बाण विधंच पुरंक नादंग हल बंधन कुसुम बासन चरण कमल रचंत संत नानक आन नारुचते मुख डिखाऊ पलक छड आन डेऊ चित जीवन संगम ते तनी

तायो रे मान दह दिस तायो माया मगन स्वाद लो मोयो तिन प्रभ आप पुरायो रहाओ हार कथा हर जस साध संगत स्यों एक मोतन यो मन लायो बिगसो पेख रंग कुसुम्ब को पार गे जो हुन जायो चरण कमल स्यों पाओ न कीनो नय सत पुरख मनायो ताकत को तावे बो पाती क्यो तेली बल्द परमायो नाम दान स्नान न कियो एक निमख न कीर्त गायो नाना झूठ लाए मन तोखयो न बूझो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेव थे आयो

पंच दूत रज संगत गोष्ठ मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वशल सुन आयो नानक भाग परोहर पच राख लाज अपनायो टोडी महला पनवा मानुख बिन बूझे बिरथा आया अनक साहसी गारबो करता जो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा किध ही काजन आया कर आ परण सवारी से जा का मन थाट बनाया तंग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया सारो दिन समझूर ही करता तो मूसले शराया पीर पयो बेगारी न्याई हर के कामन आया पयो अनुग्रह जा को प्रभु को तिस हृदय नाम साया सा संगत कै पाछे परयो जन नानक हरस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगस लागे प्रसंग प्रीत रहाओ ता तुम्हारे की पावो तूरा मस्तक ले ले लावो मां।

जिसके से फिर तिन ही संभाले तिन से सोग संताप आदे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ नानक सरन परे दुख पंजन जा काबड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परे उदर बारे कोड़ अपराध खंडन के दाते खुद बिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाएगे माया रच बंद हारे चरण कम संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा हर तीजा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद हां हां लपटे उरे मूड़े पशु न थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी अरहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ जो प्राई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो सो संचो जिद पूग तसायो अमृत नाम तुसा नहीं पायो ताम क्रोध मोह कूप परेया गुर प्रसाद नानको तरिया टोडी महला पंजवा हमारे एक हरी हरी आन अवर संजान ना करी रखाओ वड्डे पागुर अपना पायो गुरमुख हर नाम दृढ़ायो हर घर जाव ताब्रत नेमा हर घर चाहे कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जात घर गुनिया महा आनंद कीर्तन घर सुनिया कहो नानक जिन ठाकुर पाया सब के गृह।

आचे गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम आचे राम श्याम गोबिंद गो अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध शिष्य पावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुरु दान देवायो हरहाओ ते जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम सुन

जप मन राम नाम निस्तार, कोट कोट अंतर के पाप सब खोवे। हर भवजल पार उतारा रखाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निगट बस कछ नजर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो साहु सच्चा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा। हर राखे उदर मंजारा, सो ऐसा अगर सेव हो मेरे मान। हर अंत शिडामन हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर। इस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाएगे हर जप। नानक नाम अधारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मान हर हर नाम नित ध्याए, जो इच्छे सोई फल पावे।

ऐसा जित सदा सुख होई रहाओ। जिन रंग कंत न रावया सा पचोरे ताणी, हाथ पछोड़े सिर तुणे जब रैण विहाणी।

चेतना है तो चेतल है, निर्दिनमय प्राणी छिन छिन औद विहाक है, फूटे कड़जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै न मरन पछाना, आजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया जो दिन उपजिया संग ही, सो ती संग न होया रहाओ, माग पिता सुध बंद जा हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना, जीव तलो व्योहार है जको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो, तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रतन राश्यो आत्मो लगायो, काल फास जब गल परी सब पयो परायो, जान बूझ के बावरे ते काज बिगारियो, पाप करत सुगत्यो नहीं न गर्भ निवार्यो, जे बिद गुर उपदेसया

तेरा नाम है अधारा अरहाव करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी दरियाओ तू देहंद तू बिशियार तू तनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बाल बल जाओ हों बल बल जाओ नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवी द्वारका नगरी रास बगोई खूब।

आवे। रसना नाम जपोता मथिये इन विद अमृत पावो। मन संपट जित ससरन हावन भावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहेब रब तरहे। कहंदे कहे कहे कहे जावे तुम सर अवर न कोई। भगत हीन नानक जन जंपे आओ सारा ही सच्चा सोई। सूफी मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद अंतर वसे ना बाहर जाए। अमृत छोड़ कहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो वो चाकर सचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बंधया सब जग पवे।

तीर्थ मल मल नहाय, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ न हो गई, जे सण निसाने जाए, तैसो जैसा काढ़िए, जैसी कार कमाए,

कामना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही महला पहला कार सतवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए जोग ना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने योगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसाणी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है सदगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वर्ज रहाई है निजर चरे सह तुन लागे करगी परचा पाई है अंजन माहे नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजो सिंगी वाज तौ निरभौ पल पाई है अंजन माहे नरंजन रही है जोग जुगत तौ

ढूंढ ढूंढाई, सतसंगत मिलहारस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई, सूफी महला चौथा, हर कृपा करे मन हर अंग लाए, गुरमुख हर का नाम सुमाए, हर अंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ, हर रंग कौ लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मानमुख मुग्ध नरको रा होए, जे सो लोचे रंग न होवे कोय, नदर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे, सूफी महला चौथा, जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सहे सुमाए, हर राजन चा खोजे पाई, तौ कत अंध साध लोभाई, अरहाओ गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार, मानमुख हर रस चाख्या ना जाए, होमे करे बहुत

पतत जात उत्तम पया, चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोभ शीपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका, मुख अड़सर तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नानक तिन को अनदिन परसे, जे कृपा करे हर राय, सूही महला चौथा, तिनी अंतर हर आरा दया, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिन की वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर घर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा, हरहाओ तोर भगत जिना को बख्शया, हर अमृत पद पंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तेस हलत पलत मोकारा, से भगत से सेवका, जिन्ना घर नाम प्यारा, तिनकी सेवा ते घर पाई है, सिर निंदक कह पवे शारा, जिस कर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा, चौ पीढ़ी आद जुगाद विखीली कने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा, सूही महला चौथा, जिथे घर आरा दिए, तिथे घर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसे, होरत बिद लया न जाई, हर तन संचिए पाई, जे हलत पलत घर होए सखाई, हरहाओ सह संगति संघ हर तन खटिए, होर ते होर तो पाए, हर तन किते ना पाई, हर तने का वापारिया, हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये वा के, हर तन लया न जाई, हर तन रतन जवे हर माणक, हर तने नाल अमृत वे लैवत, हर भगती हर लिवलाई, हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे, निखुटे नाही, हलत पलत हर तने की, भगतां को मिली वडियाई, हर तन निरपौ सदा सदा, अस्तिर है साचा।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुद सिरट सब साजी कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुग्ध नीचाण जन नानक तौहर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवां कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई।

लोभ मोहे बाधा मां गर्त मैं निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय दूपत पाहन प्रभ मेरे लीजे सूही महला पंजवा जीवित मरे बुझे प्रभ सोए इस जान कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तैय मिल साधु हर

तुम छड़ाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ, पर्वत दोख महाबिकराला, खिन मैं दूर किए दयाला, सोग रोग बिपत अत पारी, दूर पई जप ना मुरारी, दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक सरणाए, सूही महला पंजवा, दीन छड़ाए दुनी जो लाए।

तेरी बख्श निराली जी जन सब तेरे कीते घट घट तु त्याई है तेरी गत मित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुगध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा भाग चढ़े घर संत तुम्हारे जिन कर तन घर नामा प्रवान गणी से ही ए आए सबल तिना के कामा मेरे राम हर जन के हो बल जाई केसा का कर चबर ठोलावा।

बिन गुर गुण ना सुमावनी बलराम जियो, गुण सार न जानी परम भुलाणी, जोबन बाद गवाया वार कार दार दर्शन नहीं जाता, तिरका सहज ना पाया सदगुर पूछ ना मार।

अवतनेरा सुन प्रामेर मैं तेरा परवस दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नस सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए नानक साजन कौ बल जाइए साच मिले कर आए कर आएड़े साजना तां तन करी सरसी राम हर मोहेड़ी साच ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रवी रंग रत अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विधाते तस्कर मारवसी पंचायन अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तार गुरमत मिले प्यारे वार पाएड़ा बालड़िए आस्था मनसा पूरी राम फिर रावेड़ी शब्द रली रब रहया न दूरी राम प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे जो ते दी वड्याई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़िए माड़िए त्यो लोवा सिरता जा राम हाँ बिसु पई देख गुणा अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानू

साजन आए बुठे कर माही, हर गुण गावे त्रिप्त गाही, हर गुण गाए सदा त्रिप्तासी, फिर भूख न लग गए आए, दए दिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम ते आए, नानक हर आपे जोड़ विछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए बुठे कर माही, एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही, महला तीजा कार तीजा, भगत जना की हर जीव रख है, जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे, हमे शब्द जलाया राम, हमे शब्द जलाया मेरे घर पाया, जेदी सची बाणी सची भगत करे दिन राती, गुरमुख आख बखाणी भगतां की चाल सची अत निर्मल, नाम सचा मन पाया, नानक भगत सोह है दर सच है, जिनी सचो सच कमाया, हर भगतां की जात पत है, भगत हर के नाम सुमाणे राम, हर भगत करे विचों आप गवाव है, जिन गुण अवगुण पछाणे राम, गुण अवगुण पछाणे हर नाम खाणे, पए भगत मीठी लागी, अन दिन भगत करे दिन राती, करगी महे बैरागी, भगती राते सदा मन निर्मल, हर जीव वेखे सदा नाले, नानक से भगत हर कै दर साचे, अन दिन नाम सुमाले, मनमुख भगत करे बिन सतगुर, वेण सतगुर भगत न होई राम, होमे माया रोग वे आपे, मर जन्मे दुख होई राम, मर जन्मे दुख होई, दूजे पाए परज वगोई, विन गुर तत् न जानिया, भगत विहूणा सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया, कोड़ मध्य किने पछाणिया, हर नामा सच सोई, नानक नाम मिले वड्याई, दूजे पाए पद खोई, भगतां कै कर कारज साचा, हर गुण सदा वखाणे राम, भगत खजाना आपे दिया, काल कंटक मार समाणे राम, काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे नाम रदान सत पाया, सदा अखुट कदे ना निखुट, हर दिया सहज सुपाया, हर जन ऊचे सदगी ऊचे, गुर के शब्द सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए, जुग जुग शोभा पाया, सूही महला तीजा, शब्द सच्चे सच सोहला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम, हौमे साब केलभग काटे, साज रख्या उर तारे राम, सच रख्या उर तारे दुत्तर तारे, फिर पवजल तरण ना होई, सच्चा सदगुर सच्ची बाणी, जिन सच वखा लिया सोई, साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखे साब सोई, नानक साचा साहेब साची नाई, सच निस्तारा होई, साचे सदगुर साच बुझाया, पात राखे

आई मन वजी वधाई। जब साजन सुने कर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई नानक किरपा करके मिले विछड़ कदे ना जाई।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरवड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलबिख उत्तर है हर संत धूड़ी नित नापे राम हर धूड़ी नाइए प्रभु ते आई है।

पार ब्रह्मन मूठा राम गुरमुखे सद करनी सारी बिन से प्रम पे झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया कर्म नवनिध परे पंडारा।

तू मेल है गुर शब्द बिचारा सच रते से निर्मल हो में तज विकारा जिस तू मिले सो तू मिले सो ईस त्यारा श्लोक महला तीजा सूविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिरस जाए ज्यो टेके ना बिरख की छाओ गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ उल्टी सगत सिवे कर आई मन वसया हर अमृत नाओ नानक बरिहारी गुर अपने जित मिले हर गुण गाओ महला तीजा सूहा रंग विकार है तंतन पाया जाए इस लेंदे बिलम न हो वई रंड बैठी दूजे पाए मुंद एयानी दुमनी सूहे वेस लुभाए शब्द सच्चे रंग लाल कर पाए पाए सीगार बनाए नानक सदा सुहागनी जे चलन सतगुर पाए पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मनमुख ठौर ना पाए नी फिर आवे जाई जोत भावे सोथी है सब चले रजाई श्लोक महला तीजा सूहे वेश कामण कुलखणी जो प्रव छोड़ पर पुरख तरे प्यार ओस सील ना संजम सदा झूठ बोले मनमुख कर्मखवार जिस पूर्व होवे लिखया तेस सतगुर मिले पतार सूहा वेश उतार तरे गल पैरे खिमा सीगार पीगे सौरे बो शोभा पाए तिस पूज करे साब सहसार और लाई किसे दी ना रले जिस रावे सिर जनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख प्रतार महला पहला सूहा रंग सुपने निसी बिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सतपुर आईया शार पौड़ी यो जग आप्यो पायोन कर चोज विडान पंच तात विच पाइयन मोह चूड़ गुमान आवे जाए पवाइये मनमुख अज्ञान एक ना आप बुझायोन गुरमुख हर ज्ञान

पौड़ी सच्चा अमर चलायून कर सत फुरमान सदा निचल रव रहा सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका भीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीरथी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पा चढ़िए सहोर बार तोती तूमड़ी

एक कोट पंच सुखदार पंचे मांगे हाला, जिमी नाई मैं किसकी बोई ऐसा देन दुखाला। हर के लोग मुको नीत डसे पटवारी, ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारे, तिनखो लिया उबारी रखाओ। नौ डाढ़ी दस मुंसब तावे, रैयत बसन ना देगी, डोरी पूरी मापे नाही बहु बिस्टाला लेगी। बहत्तर कार एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई, परमराय का दफ्तर सोदया बाकी रिजमना काई। संता कहो मत कोई निंद हो, संत राम गए एको, कौ कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जी ओ की, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, सह की सार सुहा गण जाने, तज अवमान सुगर लिया मन, तान मन दे न अंतर राखे, अवरा देख न सुने अपाखे, सोकत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई, अरहाव दुखी दुहागन दोए पख ही नी, जिनहा निरंतर भगत न कीनी, पुरसलाद का पंथ दुखेला, संग न साथी गमन अकेला, दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कहे रविदास शरण प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों करगत मेरी, सूही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम पी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना, क्या तू सोया जाग एना, तय जीवन जग सच कर जाना, अरहाओ जिन जियो दिया सूरज अंबरावे, सौकड़ पीतर गाड़ चलावे, कार बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सुमार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, साय परी दैद अंधेहारा, कहे रविदास निदान दीवाने, चेत सुनाही दुनिया फन खाने, सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी हुन रहन न होई, यो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी, रखाओ भाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड़ सवेरा, घर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी, कहे रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कै छूटिया। राग सूही बाणी शेख फरीद जी की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरो, बाबल होई सो सो लोरो, तैसे मन में की आरोस, मुझ अवगुन सैना ही दोष, तै साहेब की मैं सार न जानी, जो बन खोए पाछे पछतानी, रखाओ काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरहे जाली, पिरहे बिहून कतह सुख पाए, जा होए कृपाल ता प्रभु मिलाए, विद्धन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली, कर कृपा प्रसाद संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लो बेली, वाट हमारी खरी उड़ीनी, खन्यो तिखी बहुत पेईनी, उस ऊपर गए मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ समार सवेरा, सूही ललत बेड़ा बंद न सक्यो, बंधन की वेला, पार सरवर जब उछले ताब तरण दुहेला, हथ नराए कुसुम्बड़े जल जासी ठोला, अरहाओ एक आपी ने पातली, सह केरे बोला, दुद्धा थनी न आवई, फिर होए न मेला।

माया ग्रस्त परमत है प्राणी, रख ले वो जने अपना, ज्यों प्रहलाद हरनास ग्रस्यो हर रख्यो हर सरना, कामन कमन की गात मित कहिए हर की गे पतत पवन्ना, ओ टोवे टोर हाथ चमचमरे हार उतरियो परयो सरना, प्रभ दीन दयाल भगत पवतारन हम पापी राख पपना, हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दासन्ना, बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञानमती शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख लेवो।

पड़ परताप, गुर प्रसाद न होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सद गुर तूठे, पार ब्रह्म प्रापे रखवाले।

मुई अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मुई निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए पूर्ण

मिले प्यारे, सूजन होत निखाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनु हुए दयाला। सबल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन्हें अपना प्रभ जाता,

तान मन तान अर्पो सभ्य अपना, कमन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रा मंगन, तू पेखत सोभा मेरे आंगन रखाओ, आनक जुत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मने उधारो, मत बुसुरत नहीं चतराई, ता मिलगे जान लय मिलाई, नयन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सबल सो आया। बिरावल महला पंजवा, माद पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रब रहया प्रसम में आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे, रखाओ तिखा भूख बो तप्त व्यापया, शीतल पय हर हर जस जापया, कोट जदन संतोख न पाया, मान तृप्ताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुर पूरा वड़ भागी पाईए, मिल साधु हर नाम।

लोड़े सो करे, कुछ बिन कछ नाहे, प्रताप तुम्हारा देख कै जम दूत छड जाहे, तुमरी कृपा ते छूटिए बिन से अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरदेव रखाओ, खोजत खोजत खोजया नामे बिन कूर, जीवन सुख सब साध संग ब्राह्मण सापूर, जित जित लाभ तित तित लगे स्यानप सब जाली, जत कत तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली, सबके तुम ते मंगना वडभागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए, बिलावल महला पंजवां, साध संगत कहे बास बै कर्म सब नसना, प्रभ से ती रंग रातिया ताते गर्भना ग्रसना, नाम कैद गोविंद का सूची पई रसना, मन तन निर्मल होई है गुर का जब जपना रखाओ, हर चागत त्रापया मान रस लय हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बेगसना, शीतल सांत संतोख होए सा बूझी तृष्णा, दैद तावत मिट गए निर्मल थान बसना, राखन हारी राखिया पय प्रसना, नाम निधान नान सुखी पेख साध दर्शना, बलावल मुहला पंजवा पानी पखा पीस दास कह तब होहे निहाल, राज मिलक सिकदारिया अग्नि मै जाल, संत जना का शोरा ते चरणी लाग, माया तारी छदरपात तिन छोडो त्याग रखाओ, संतन का दाना रूखा तो सर्बनधान, गृह सागत शती प्रकार ते बिहू समान, भगत जना का लूगरा ओड नगन न होई, सागत सिर पाओ रेशमी पैरत पद खोई, सागत स्यो मुख जोरे अध विचो टूटे, हर जन की सेवा जो करे एक ऊते छूटे, साग किश तुम ही ते हुआ आप बंत बनाई, दर्शन पेड़त

जी जंत सो प्रसन्न भए देख प्रताप करज उतारिया सतगुरु कर आहर आप खात खर्चित निवत रहे गुरु शब्द अखूट।

भगत आराध्य एक रंग गोविंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार, शरण परे प्रभु तेरिया प्रभु की वडियाई, नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई। बिलावल मोहल्ला पंजवा, सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पैरास, करतारपुर करता वसै संतन कै पास रखाओ, बिघन न को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास, तोट न आवे कदे मूल पूर्ण पंडार, चरण कवन मन तन बसे प्रभ पगम अपार, बस्त कमावत सब सुखी किस ऊन ना दिस, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूर्ण जगदीश, जय जयकार सभे करे सचथान सोहय, जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल मोहल्ला पंजवा, हर हर हर आराधिये होइए आरोग, रामचंद की लिस्ट का जिन मारिया रोग, रखाव गुर पूरा हर जापिए नित कीचे भोग, साध संगत कै वारणे मिलया संयोग, जे सिमरत सुख पाईए बिन से बियोग, नानक

को नास, चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कड़ सास रहाओ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास। बिलावल मोहल्ला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई।

खोए खोए खोई हो, मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए, भगत वशल कृपाए,

सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते ऊपर को नाही। बिलावल मोहल्ला पंजवां। सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कछ दुख ना व्यापै, आगे दरगे पूर्ण काम रहाओ, आप त्याग परिये ने सरणी, गुरते पाएगे इहो निदान, जन्म मरण की कटिए फांसी, ताची दरगे का निशान, जो तुम करो सोई फल मानो, मन ते छूटे सगल गुमान, कहो नानक ताकी सरणाई, जा का किया सगल जहान। बिलावल मोहल्ला पंजवा। मान तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर वकार नित, तिस रसना का मोल किश नाही रहाओ, कोल समूह उदरे खिन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अंध सेती बिखिया बन गाही, चरण प्रभु के बोहित पाए, और सागर पार पराही, संत सेव

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इहो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काड कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहियो।

बनायो आप अपने सेवक की आपे रख प्रभ मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत्र।

दूत धुट सब होए खया, गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे घर की जया। बिलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे, करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव, सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखया राता स्वान जैसे, औद विहावत अदक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे, शरण दुख पंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताज अवमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खय। महामुद अजान अज्ञानी रखे थार दए, कहो नानक गुरपुरा फिट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवा, जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे, ता मेरी आस पुन्नी रखाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मोयो अंध तुनी, उबजो चाओ मिलन प्रीतम रहे ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि, अंधले टेक नेर थन थन पायो। प्रव नानक अनक गुनी, राग बिलावल महला पंजवा कर तेरवा पड़ताल।

पाओ। सरण सुहागन चरण शीश धार, लालन मोहे मिलावो ताप कर आवेरी। तुनो सहेरी मिलन बाद कहो, सगरो अंग मिटावो तो कर ही लालन पावो। तरस मंगल गुण गावो, आनंद रूप त्यावो। नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायोरी। मोहन रूप दिखावे आ मोहे नींद सुहावे, ता मेरी तिखा बुझानी। आव मैं सहज सुमानी, मीठी तरह कहानी। मोहन लालन पायोरी। अरहाओ दूजा बिलावल मोहल्ला पंजवा, मोरी अंग जाए दर्शन पावत हे। राचो नाथ की सहाई संतना, आव चरण गहे रखाओ। आहे मन अवरना भावे, चरणावे चरणावे। उलझ्यो आलम करंद कमल ज्यो, आनस नहीं चाहे। एके हर लाहे अनते टूटिए, रिखते छूटिए। मान हरस कूटिए, संग साधु उल्टिए। अन नाही नाही रे, नानक प्रीत चरण चरण हे। राग बिलावल महला नावा, दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद दुखरता हर नाम पछानो, अजामल गण का जे सिमरत मुक्त पय जी जानो। रघाव गज की त्रास मिट्टी छिन्हू मैं, जब ही राम बखानो। नारद कहत सुंदर रू बारक, भजन माए लबटानो। अचल अमर निरपय पद पायो, जगत जाए हैरानो। नानक कहत भगत रशक हर, निकट ताए तो मानो। बिलावल महला नामा, हर के नाम बिना दुख पावे। भगत बिना सहसा न चूके, गुर ए पेद बतावे। रघाव कहां पयो तीर्थ व्रत किए, आराम सर नहीं आवे। जोग जग निफलते मानो, जो प्रजस बसरावे।

त्रिगुण उपजय बिन से दूरे, दूजी दुरमत दर्द ना जाए, टूटे गुरमुख दारू गुण गाए, तोती उजल तिलक गलमाला, अंतर क्रोध पड़े नाटसाला, नाम सार माया मद पिया, बिन गुर भगत नहीं सुगतिया, तूकर स्वान गर्द मंजारा, पशु मलेश नीच चंडाला, गुरते मोह फेरे तिन जोन पवाई है, बंधन बाध्या आई है जाइए, गुर सेवा ते लहे पदार्थ, हृदय नाम सदा किरतार्थ, साची दरगे पूछ ना होए, माने हुक्म थीजे दर सोए, सदगुर मिले ता तिस को जाने, रहे रजाई हुक्म पछाणे, हुक्म पछाण सचे दरवास, काल बिकाल शब्द पय नास, रहे अतीत जाने सब तिसका, तान मन अर्पे है इहो जिसका, ना उ आवे ना उ जाए, नानक साचे साच समाए, बिलावल मुहला तीजा, अष्टपदी कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जग कौआ मुख चुंच ज्ञान, अंतर लोभ झूठ अभिमान, बिन नावे पाज लहे गनदान, सतगुर सेव नाम से मन कीत, गुर पेटे हर नाम चेतावे, बिन नावे होर

आप ना बूझे लोक बजावे मन का अंधा अंध कुमावे तार कर महल ठौर कैसे पावे हर जियो सेव गे अंतर जामी कट कट अंतर जिकी जोत समानी तिस नाल क्या चले पै नामी साचा नाम साचे शब्द जाने आपे आप मिले चूके अभमाने गुरमुख नाम सदा सदा वखाने सदगुर सेवे दूजी दुरमत जाई औगण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति ज्योत समाई सदगुर मिले वड्डी वडियाई दुख काट हिरदे नाम साई नाम रते सदा सुख पाई गुरमत मान्या करणी सार गुरमत मान्या मुख द्वार नानक गुरमत मान्या परवार साधार बिलावल महला चौथा अष्टपदियां।

उपैया साधु शरण परे सो उबरे खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय दियो कंबीर तरलोचन औजात रविदास चमियार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत तन तना जट सैन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई।

तृतीय ब्रह्मा विष्णु महेशा देवी देवे उपाए वेसा ज्योति जाति गणतन आवे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाए रहा भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर चौथ उपाए चारे वेदा खाणी चारे बाणी फेदा अष्ट दिशा खट तीन उपाय तो बूझे जिस आप बुझाए तीन समावे चौथे वासा परुणत नानक अमता के दासा पंचमी पंच पूद बेताला आप अगोचर पुरख निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस चाख सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दार कर साचे देख दूर झूठे को ना ही पदनाओ कव न सूचा काला काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए शेरी पर में मुक्त न होए तौ छूटे जा खदम छिड़ाए गुरमत मेले भगत दरड़ाए खष्टी खट दर्शन प्रसाजे अनहद शब्द निराला वाजे जे प्रप हावे ता महल बुलावे शब्दे फेदे तौ पद पावे कर कर वेश खपे लै जावे साचे साचे साच समावे सप्तमी संतोख शरीर सास मुंद परे निर्मल नीर मजन शील सजरदे विचार गुर के शब्द पावे सा पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अठ सिद्ध बुद्ध साधे सच ने केवल कर्म आराधे पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ तिसमय मनुआ रहा लिव लाए परुणत नानक काल न खाए नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा कड़ कड़ नाथ महा

लाड ले लाड लड़ाए सब में मिर्ख मारी होए गते कीत चितवो मिट अंधारे जो आस चकवीदन चरे नांग पैम पै प्रसंग मेली मछली नीर ना विसरे तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा तुही बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अंध मंगल रस खणा नवल नवतन नह उबाला कम रसना गुण फना मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक पयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा बिलावल महला पंजवा शांत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक सुंदर सांत दयाल प्रभ सर्व सुखानंद पियो सुख सागर प्रापेटे है नानक सुखी हो त्यो जियो शांत सुख सागर प्रापाई है जब हो वे भागो राम मानन मान वियाई है हर चरणी लागो राम तोड़ श्याम चातरी दुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पो शरणाई राम राय फिर होए सुहागो राम तो प्रभ तज कद लागी है जिस बिन मर जाय गे राम लाज न आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाई गे राम पतत पावन प्रभ त्याग करे तो कत ठहराई गे राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाए गे राम श्री गोपाल ना उच्चर है बल गई है दो चार नरसना राम प्रभ भगत वशल ने सेव ही ताया काक ग्रसना राम प्रमोही दुख ना जान ही पुड़जो नी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसना राम लाए ब्रो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा होमे बिख त्यागन राम ईत ऊत न डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जे प्रपाया अपना ता अटल सुहागन राम बिलावल महला पंजवा हर खो जोवड़ पागियो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सद गावीए पार ब्रह्म के रंगे राम तो प्रसद ही सेविए पाई गे फल मंगे राम नानक प्रसरणागति जब अंत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब कुछ दीना राम वड़पागी मेला बड़ा गुरमु पिर चीना राम बहां पगड़ तमते काढ़िया कर अपना लीना राम नाम जबत नानक जीवे शीतल मन सीना राम क्या गुण तेरे कह सको प्रभु अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण पय पर गरामी राम गुण गावत गोविंद के सब इश पुजामी राम नानक उधरे जप हरे सहू का स्वामी राम रस पिनेड़े अपने राम संगे ते लोइन नीके राम प्रापेहत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस घर पाया दिखिया रस पीके राम नानक जल जले समाया

फिर जो नी पाए गुरमुख जन्म सबल है जिसनु आपे लए मिलाए नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पले पाए पौड़ी सब डियाईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याईए जे वस्त मंगिए साई पाईए जे नाम चित लाईए गुज गल जी की चै सतगुरु पास ता सर्व सुख पाईए गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लै जाइए जिस पूर्व हो वे लिखिया सो हर गुण गाईए सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रामेल मिलाए सतगुर का दर्शन सबल है जेहा को इच्छे तेहा फल पाए गुर का शब्द अमृत है तब तृष्णा भुख गवाए हारस पी संतोख होआ सच वसिया मन आए सच त्याए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दैद पसरिया गुर के सहे सुपाए नानक जिन अंदर सच है ते जन छपे ना किसे देश पाए महला तीजा गुर सेवा ते घर पाईए जा को नदर करे मानस ते देवते पए सच्ची पगध दे होमे मार मलायन गुर के शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करते आ वधाई सेवक सिख सा वेख वेख जीवन ओना अंदर हिरदे पाई निंदक दुष्ट वडियाई वेख न सकन ओना पराया पला ना सुखाई क्या होवे किस ही की चकमारी या सच्चे स्यो बने आई जे गल करते पावे सा नित नित चढ़े सवाई सब चाक चक मरे लोकाई सलोक महला तीजा त्रिग ए आसा दूजे पाप की जो मुहे माया चित लाए हर सुख पल रत्या गया नाम सार दुख पाए मान मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिर आवे जाए कार्य सिद्ध ना हो वनी अंत गया पछताए जिस कर्म होवे तेस सतगुर मिले तू हर हर नाम ते आए नाम रते जन सदा सुख पाए जन नानक तिन बल जाए महला तीजा आसा मनसा जग मोहनी जिन होया संसार सब को जम के चीरे विच है जेता सब आकार हुक्मी ही जम लगदा तू उबर जे बगसे करतार नानक गुरप्रसादी ओ मन तां तर जां छोड़े अंक।

कैद कबीर सुहू रे संतो मिल गए सार्ग पानी रे बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो हर गुण कथत सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक सयानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहाओ आप ना बौरा राम क्यों बौरा सदगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत खोई मेरे परम फूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ता एक कह जाने अभे ना माता तो कभो ना माता कहे कबीर आरामे रंग राता बिलावल ग्रेव तज बानखण जाइए क्यों खाइए कंदा अजो विकार ना छोड़ई पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो भजल निध पारी।

राम लिवलाय, राम राम जप निर्मल भय, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म मरण निवार, उचरत राम भय पार उतार, सबते ऊंच राम।

लूट लेहे सागत पद खोवे साध जना पग मल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जो है काम क्रोध लो मोह ना पोह सा संग जप पे निरंकार निंदक कह मोह लागे शार राम कवच दास का सुनाहो दो दुष्ट तिसपो तनाहे जो जो गर्व करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरण आए जो जो शरण पया हर राय

संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल तान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कह ठांडी दरबार तरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पग नेवर शनक शन हरी जाओ लग प्राण तऊ लग संगे नहे तचली बेग उठ नंगे सुहागन पवन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे बड़े भूभत राजे हैं सिद्धे सुहागन

ओ मैं मान कलाला, तुम देव होते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला। हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा। तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए। राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मध बासरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर साजा। राम को नृतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता सासी गारी रखाओ। आखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चिंदोआ, पन्म चूला करत अकेला, जलते उपत हुआ, पांच तत्

तू मान है खड़पी एका बात बखान है दर अष्टी मिल एको कहया तापी जोगी पेदन लाया किंकरी अनूप वाज है जोगिया मतवारो रे रहाओ प्रथम वस्या सदका खेड़ा तृतीय में कश पया दुतेड़ा द्वितीया अर्धो अर्ध समाया एक रहया ता एक दिखाया एक कै सू पुरोए मणिये गांठी पेन पेन पेन पेन तनिये फिरती माला बोवध पाए खिंचा सूत ता आई थाए क्यों मैं एक कै मठ है किया ते बिखड़े थान अनक खिड़किया खोजत खोज द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया क्यों किंकरी आनूप वाजे सुन जोगी कैमन मीठी लागे रहा वो दूजा।

भय परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो दिहाई रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी मांगे टूका तृप्त न पावे नाद छोड़ जाचे लाज न आवे क्याल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गुर गुर कीते बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसन हुआ नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंता नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थिर क्यों जप्या नाथ दिन रहनाई हुन पाया गुर गोसाई रहाओ दूजा राम कली महला पनवा करन करा मनसोई आन ना दिसे कोई ठाकुर मेरा सूड सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे घर समीठा गुरमुख किने विरले डीठा रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम पीत अमर पय ने काम तन मन शीतल अग्नि निवारी अंधरू प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब कुछ तेरा सब बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पड़दा टूटा हौ तेरा तू मैं मन मूठा राम कली महला पंजवा सेवक लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप निवारी जिस गुर कहो सद बलखारी ताज मारे पूरे

तन ते छुटकी अपनी तारी, प्रभ की आग्या लगी प्यारी। जो कुछ करे सो मन मेरा मीठा, ता यो अजद नयन डीठा। हम ओ जानी रे मेरी गई बलाए, मुर्गी निवारी ममता। गुर पूरे लियो समझाए रखाओ, कर कृपा राख्यो गुर सरना। गुर पकराए घर के चरना, बीस बिसवे जामन ठहराने। गुर पार ब्रह्म एक ही जाने, जो जो किन्नु हम तिसके दास। प्रा मेरे को सगल निवास, ना को दूत नहीं बैराई। गल मिल चाले एक पाई जा।

अंत की बार ऊठ सिधारे ना बिनासव चूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संगराते तेसा माया मूठ परानी रखाओ तीर्थ नाए न उतर समायल कर्म धर्म सब हो में फैल लोक बिचारे गत नहीं होए ना बिहूने चल सहे रोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सो दे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपे आप जपाए सगल फला से सुख समाए रखन हारे रख हो आप सगल सुखा प्र तुम रे हाथ जित लावे तित लागे स्वामी नानक साहेब अंतर जामी राम कली महला पंजवा जो कुछ करे तो ही सुख जाना मन असमझ साह संगपति आना डोलन ते चूका ठहराया सत महे ले सत समाया दू गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन में मानी महापुरख का संग पया रहाओ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई पला जय राखे सोई मुक्त स्थान जो जपाए सोई नाम अड़सठ तीर्थ जय साध भगत धर है तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है सर्व आनंद जब दर्शन पाईए राम गुणा नित नित घर गाएगे आपे।

रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमख हृदय बस हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तोर वीर तीर्ज मद पूरा तेज समाद तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद अरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कत नाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उतरे।

दया तारी गोविंद गुसाई हर घर नानक टेक टकाई राम करी महला पंजवा संत के संग राम रंकेल आगे जमसे हुए ना मेल अंगबुद का पया विनाश दुर्मत होई सगली नास राम नाम।

माया मोया टेढ हो जात अभागे तय लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर न चेत्यो मन माही रखाओ अमृत कौरा बिखिया मीठी सागत की बेद नयन हो डीठी ऊड़ कपट अहंकारी जाना नाम सुनत जन बिशु डसाना माया कारण सदगी चू है मान मुख कभे न उस्त करे निरपो निरंकार दातार तिसु प्रीत न करे गवार सब सहा सिर साचा साहो वे मोहताज पूरा पाप साहो मोह मगन लपट्यो परम गिरह नानक तरिये तेरी मेहर राम कली महला पंजवा रैन दिनस जपो हरनाओ आगे दरगे पावे थाओ सदा आनंद न हो वी सोग कहू न व्यापे हो मैं रोग खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा परम गद पावे हर सिमर प्राणी रखाओ गण मन देखो सगल विचार ना बिना को सके ना तार सगल उपावन चल है संग पवजल तरिगे प्रभ के रंग देही तोय न उतरै मैल होमे व्यापे दुबदा फैल हर हर औखद जो जन खाए ताका रोग सगल मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते कहू न बिस

सागर तरियो बाशर खोज, खेद न पायो नए पुनरोज। सिंध समायो कटके माघे, करण हार कहो किस अज जनाघे। जो छूटो तो जाए पयाल, जो कढ़ो तो नजर निहाल। पाप पुन हमरे वसनाहे, रसक रसक नानक गुण गाहे। राम कली मोहल्ला पंजवा, ना तन तेरा ना मन तोहे। माया मोहे ब्यापिया तोहे, उदम करे गाडर ज्यो शेल। अचिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरनाए मना। राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावे साज तना रहाओ। ऊने काज न होत पूरे, काम क्रोध मद सदगी चूरे। करे विकार जीरे के ताई, गाफल संगनत हुआ जाई। तरत तो अनक शल जाने, कौडी कौडी को खाग सिर छाने। जिन दिया तसे न चेते मूल, मिथ्या लोभ न उतरे सूल। पार ब्रह्म जब पए दयाल, जो मन हुआ सादरवाल। हस्त कमल लड़ली नू लाए, नानक साचे सा समाए। राम कली मोहल्ला पंजवा, राजा राम की शरणाए। निरपो पए गोविंद गुण गाव, साध संग दुख जाए रघाव। जाके राम बसे मन माही, तुझन दुत्तर पेखत नाही। सगले काश वारे अपने, हर हर नाम रसनित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तरे, तो दास अंदेशा काहे करे। जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुर ऊपर कुर्बान। गुर परमेश्वर पेट निहाल, तो दर्शन पाए जिस होए दयाल। पार ब्रह्म जिक्र पा करे, सा संग सो पव जल तरे। अमृत पीवो साध प्यारे, मोख उजल साते दरबारे। अंध करो ताज सगल विकार, नानक हर जप उतर हो पार। राम कली मोहल्ला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागे। माटी को जल दह दिस जागे, ऊपर चरण तले आकाश। खड़मे सिंध की ओ परगास, ऐसा समर्थ हर जीव आप। निमकन बिसरे जी भगतन कै, आठ पैर मनता को जाप रहाओ। प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू कीनू साबन सूद। पय ते निरपो डरता फिरे, हुंदी कौ अणहुंदी हिरे। देही गुप्त बदेही दीसे, सगले साज कर जगदीसे। ठगन हार अन ठगदा ठग, बिन वखर फेर फिर उठ लागे। संसभा बिन करो बखिया।

जन्मे त्यों मरण पया, ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तान तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सुहेत वधाए, की नाम सार है परम गया। रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में कष्ट पया, उन दान इसनान ना संजम, सा संत दिन बाद जया, लाल तिलागे नाम सारे, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, ऐस निंदा ताद पराई, हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुर शब्द ना गत पद पाव है, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करें टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हमे रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आपद देखे, सागत मान अपमान भया, जिसका इहो तान तान सो पिर लेवे, अंतर सहसा दुख पया, अंत काल किस साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पय सागर असराल पया, देव कुटांब माया ग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जा आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया, जो कुछ करना सो कर रहया, बख्शन हारे बख्श लया, जिन तो चाखिया राम रसायन, तिरकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते भ्रगत पया, आप मार गुरमुख कर पाए, नानक सह समाए लया, राम कली दक्षिणी महला पहला, जत संजम साज दृढ़ाया, सा सद रहीना, मेरा गुरदयाल सदा रगलीना, ऐस रह एक लिव लागी, ताचे देख पतीना रखाओ, रह गगन पुर दृढ़ समय सार।

एक मैं सर्व सर्व मैं एका ए सब गुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा तो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया तिर पवन जो दिखाई सच्चे तख्त सच महली बैठे निरपो ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी काड़ काड़ किंगरी वाई नानक शरण प्रभु की छूटे सतगुर सच सुखाई राम कली मखला पहला औ हठ हस मड़ी करशाया तारण गगन कल तारी गुरम केती शब्द उधारी संतो रखाओ ममता मार ओ में सुख तिर पवन जो तुम्हारी मनसा मार मने मैं राखे सतगुर शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाह दवाजे फड़कड़ जोत तुम्हारी पर पांच बेण तई मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पांच तत् मिल ऐरस दीव निर्मल ज्योत पारी रस लौके इव तन किंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी मैं आसन औदू अलख अगम अपारी।

नित नित मंगल सुनिए राम कली मोहल्ला पंजवा हर हर त्याए मना खिन नाम सारिये राम रामा राम रमा कंठ उतारिये उतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो भय दूर करता पाप हरता दुसे दुख पाव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारिये चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिर्ख पंडार नाम अनंत तरा नाम नरहर निदान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायना केल खरना ना पुने चरणा ना जमकी त्रास हरा बिनवंत नानक राज जन की चरण कमल है आसरा गुण बेंत स्वामी तेरे कोई ना जान नहीं देख चलत दयाल सुन भगत वखान नहीं जी जंत सब तो त्यावे पुरख पद परमेश्वरा सर्व जाचक एक दाता करना मैं जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभु जी मान नहीं बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पछान नहीं।

एव छूटे फिर भास न पाए, बीरा बीरा कर रही वीर पय बैराय, वीर चले कर अपने बहन बिरेजल जाए, बाबल कहे कर बेटड़ी बाली बाले नेहे, जे लोड़े वर कामणी सतगुर सेवै तेहे, बिरलो ज्ञानी बुझणो सतगुर साच मिले, ठाकुर हाथ वडाइया जय पावे तय दे, बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, ए बाणी महापुरख की निरकरवासा होए, पन पन कड़िए कड़कड़ पजे, हाय उसारे उसरे टाहे, सर पर सुख पी पर पुख, समर्थ वे प्रवाहे, परम पुलाने पए देवाने, विण भागा क्या पाईए, गुरम ज्ञान डोरी प्रा पकड़ी जिन खिंचे तिन जाइए, हर गुण गाए सदा रंग राते, बौड़ना पछो ताइए, पब्बे भाले गुरमुख बूझे कनज करवासा पाइए, पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा आस निराशा तरीए, गुरप्रसादी आपो चीने जीवत्या इव मरिए, माया माया करम होए माया किसे ना साथ, हंस चले उड़ डुमणो माया पूली आथ, मन झूठा जम जोया अब गुण चले नाल, मन में मान उल्टो मरे जे गुण होवे नाल, मेरी मेरी करम होए बिन नावे दुख पाल, गढ़ मंदिर महिला कहा यो बाजी दीबान, नांग सच्चे नाम वेण झूठा आमन जान, आपे चतर स्वरूप है आपे जान सुजान, जो आवे से जाए फोन आए गए पछताहे, लख चौरासी मेदनी हटे ना वधे उताहे, से जन उबरे जिन हर पाया, धंधा मुआ विगोती माया, जो दिसे सो चालसी इसको उम्मीद करेओ, जियो समपो अपना तन मन आगे देओ, अस्थिर करता तू तनी तेसी की मैं ओट, गुण की मारी होमोई सब धरती मन चोट, राणा राव ना कोर है रंगना तुंग फकीर।

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुरमत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो मैं मेड़।

रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले। इस कथा का दे विचार, बहुजल शब्द लंघावन हार, पवन आरंभ सदगुरु मत वेला, शब्द गुरु तुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला। एक शब्द कथा विचारी, गुरमुख हो में अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाइए सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार। हिवे का घर मंदिर अग्न पिराहन, कावन गुफा जित रहे आवा।

सब तीर्थ गह ओ तपा कैसे परमगत लह गुर प्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा सो तपा ये ओ तप का ले सदगुर नु मिले शब्द समाले सदगुर की सेवा यो तप प्रवान नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी रात दिस उपायन संसार की वर्तन गुरमति कड़चानना आनेर बिनासन हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वन त्रेण सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पाण सब देखी सोजी पई सच्चे आप बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन जिनके चित में परम ते दे दिते नानका ते हो जेगा तर्म आपए निरंजन परम पद ताका भूखा होए जिसका भोजन नानका विरला पाए कोए महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन जे पढ़ कर भोजन करें उदरे कारण अपने बैले पेख करेन अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौन करेन पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन पौड़ी अंबर तरत बछोड़ेन वे सच्चा असराओ घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच सुनाओ सच्चा आप तगत सच्चा बै सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा रैनायर महाय अनंत है कूड़ी आवे जाए भाणे चले अपने बहुती लय सजाए राय नायर में सब किश है कर्मी पल्ले पाए नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए महला तीजा है जे सतगुर ना सेवे हो विच होमे जन्म विनाश रसना हरसना चखे हो कमल न होयो परगास बिख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनाश एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिग वास जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यो विचे गिरे उदास जन नान करे कराया सबको क्यों पावे तिब हर गुणतास पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंथ कीनी आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी सिमरत शास्त्र साजियन पाप पुन ग्रंथ गणीनी जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी तबे आपे आप वर्तदा आपे बख्श मिलाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए जो से रते अपने तेन तन लोभ रत न होए पए पए तन खीन होए लोभ रत विचो जाए ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुर्मत महल गवाए नानक तेजन सोने जो रते हारंग लाए महला तीजा राम कली रामन वसया ता बनया सीगार गुर के शब्द कमल बिरसया ता सौंपया भगत भंडार परम गया ता जा गया चूका अज्ञान अंधार देश नु रूप अत अगला जिस वर नाल प्यार सदा रवे तेरे अपना तोबावंती नार मनमुख सीगार ना जाननी जसन जन्म सवहार
फिर घर भगती सीगार कर निज जम्मे हुए खुवार सहे सारे विच सोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो बच गए संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सदगुर सेवे सात न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोचिए बिन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए तिन जम्मण मरण ना चुकई हौमे विच दुख पाए जिनी सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सुखा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब तावे आप निचल अचल है होर आवे जाव है सदा सदा घर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निकर वासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरते सच नानक हुक्मे जो बुझे तो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरे हुक्म न बूझे सच नानक हर का पाणा मन्ने तो भगत होए विण मन्ने कच्चन कच्च महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार ओए थाओ कथाओ ना जाननी उन अंतर लो विकार ओए अपने स्वाए आए बहे गल्ला करे ओ ना मारे जम जिंदार अगे दरगे लेखे मंगे मार खुआर कीचे कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरे कोई कड्डो यो विचार सतगुर मिले त नाम दड़ाए सब केल कटन हार नाम जपे नाम आराध्य ते जन को करो सब नमस्कार मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी खुद जेवड़दाता नाहे किस आग सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो होमे जाइए रस का सादा बार सच्ची वडे आईए जिसनु बख्शे तिस दे आप लय मिलाइए तट अंतर अमृत रख्यों गुरम किसे पे आई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा पाबाणियां कहानियां उत सुपुत करेन जे सतगुर पावे सो मन लैन से ही कर्म करेन जाए पुछो सिमरत शास्त्र प्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच समालेन नानकाए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंगला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने निज झूठो झूठ बोलेन कूड़ कु सत कुमांदे पर निंदा सदा करेन ओए आ डुबे पर निंदगा सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखद जेती सिट सब कीती एक कूड़ कु सत लायन मनमुख विभूति गुरमुख सदा त्याई है अंदर घर प्रीति जिन को पोते पुन है तिन वात से पीति नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਹੇ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵਣ ਜਾਹੇ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਖੱਟੇ ਭਾਓ, ਭਾਵੇ ਆਵੋ ਪਾਵੇ ਜਾਓ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਏ, ਆਪੋ ਆਪੇ ਪੂਜਾ ਹੋਏ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕੈ ਭਏ ਨਿਆਏ, ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ ਸੁਣਾਏ। ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕੰਨ ਰੇ ਸੁਮਾਹੇ, ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੇ ਚਾੜੀ ਖਾਹੇ। ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ ਕੋਏ। ਜੋਗੀ ਗਿਰਹੀ ਜਡਾ ਬੇਪੂਤ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇ ਪੂਤ। ਜੋਗ ਨ ਪਾਇਆ ਜੁੱਤ ਗਵਾਈ, ਕਿਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਲਕਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਪੇ ਆਖਣੇ ਆਪੇ ਜਾਣ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਸੂਜ ਨੇਊ ਪਲਗਲ ਪਾਵੇ। ਤੂਤ ਪਾਏ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ, ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਵਿਣ ਗੁਰ ਪੀਰੇ ਉਹ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਾਉ ਦਸਾਏ ਉਥੇ ਕੋ ਜਾਏ। ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਪਿਸਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਘਰ ਜੁਗਤ ਦਸਾਈ। ਤਿਤ ਕਾਰਨ ਕਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਏ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਟਾਊ। ਚੀਰੀ ਆਈ ਟਿਲ ਨਾ ਕਾਊ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣੇ। ਹੋਰ ਫੱਕੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ, ਸਭਨਾ ਕਾਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ। ਕਰਣੀ ਬਾਜੋ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ, ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਆਖੀਏ ਕਾਇਆ ਕੋੜ ਗੜ। ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਜਵੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖਰ ਨਾਮ ਪੜ। ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਅਤ ਸੋਹਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜ। ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਖੁਆਇਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਿਤ ਕੜ। ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਸਦੁਖੀਆ ਨਾ ਸਸੁਖੀਆ, ਨਾ ਸਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਸਤ ਮੂਡ ਮੁੰਡਾਈ ਕੇਸੀ। ਨਾ ਸਤ ਪੜਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਸਤ ਰੁੱਖੀ ਬਿਰਖੀ ਪੱਥਰ। ਆਪ ਸ਼ਾਵੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ, ਨਾ ਸਹਸਤੀ ਬੱਧੇ ਸੰਗਲ। ਨਾ ਸਤ ਗਾਈ ਕਾਉ ਚਰੇ, ਜਿਸ ਹਸਿੱਧ ਦੇਵੇ ਜੇ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਤ ਆਏ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ। ਜਿਸ ਕੜ ਪੀਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ, ਸਭ ਕੜ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ। ਜਿਸੇ ਖੁਆਈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਕਹੇ, ਜਿਸੇ ਦਿਖਾਲਾ ਵਾਟੜੀ ਤਿਸੇ ਭੁਲਾਵੇ ਕੌਣ। ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ ਸਿਰ, ਤਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੌਣ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰੇ, ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ। ਬੋਲੇ ਈਸ਼ਰ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਅਵਧੂਤੀ ਜੋ ਤੂਪੇ ਆਪ, ਪੀਖਿਆ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਸੰਤਾਪ। ਔ ਹੱਠ ਪਟਣ ਮੈਂ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਸੋ ਅਵਧੂਤੀ ਸੇ ਪੁਰ ਚੜੇ। ਬੋਲੇ ਗੋਰਖ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਜੇ ਪਾਲੇ ਉਦਾਸ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੇ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਸ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਗੰਢ, ਤਿਸ ਉਦਾਸੀ ਕਾ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਧ। ਬੋਲੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਪਾਖੰਡੀ ਜੇ ਕਾਇਆ ਪਖਾਲੇ, ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰ ਜਾਲੇ। ਉਪਨੇ ਬਿੰਦ ਨਾ ਦੇਈ ਝਰਣਾ, ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨਾ ਮਰਣਾ। ਬੋਲੇ ਚਿਰਪਟ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਪੈਰਾਗੀ ਜੇ ਉਲਟੇ ਬ੍ਰਹਮ,
गगन मंडल मैं रोपे थम आए निस अंतर रहे ध्यान ते बैरागी सत सुमान बोले परतर सत स्वरूप परम तत् मैं रेखना रूप मुखला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीव है जोत कन पड़ाए क्या खाजे पुत आसत नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रहे हे आओ तूप शाम जे सम कर सह

अंतकाल मत लगे पीड़, रोवे राजे कन पड़ाए, कर कर मांगे पीख्या जाए, रोवे कीर्तन संचे तन जाए, पंडित रोवे ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ तोई जिन जाए, औरी कर्मना लेखे लाए महला दूजा, जब ताप सब कुछ मन्ने है, अवकारा सा बाद, नानक मन्या मन्नी बुझगे गुर प्रसाद पौड़ी, काया हंस तुर मेल करते लिख पाया, थमे गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया, गुण गावे गुण उच्चरे गुण माये सुमाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया, सब किश आपे आप है आपे दे वड्याई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला दूजा, नानक अंधा होए कै रत्ना परखण जाए, रत्ना सार ना जाणई, आवे आप लखाए महला दूजा, रत्ना केरी गुसली रत्नी खोली आए, वखर तै बन जा रहा दोहा रही सुमाए, जिन गुण पल्ले नानका मानक बन जैसे, रत्ना सार ना जाणई, अंधे वत्ते लोए पौड़ी, नौ दरवाजे कया कोट है, दसवें गुप्त रखी जे, बजर कपाट ना खुलनी पुर शब्द खोली जे, अनखद वाजे तुन वज दे पुर शब्द सुनी जे, तेतकड़ अंतर चानना कर भगत मिली जे, तम एक वर्तदा जिने आपे रचन रचाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला दूजा, अंधे कह राय दस्य है, अंधा होए सो जाए, होए सो जाखा नानका तो क्यों उजड़ पाए, अंधे ए ना आखियन जेन मुख लोइन नाहे, अंधे से ही नानका खसमो कुत्ते जाए महला दूजा, साहिब अंधा जो किया करे सो जाखा होए, जेखा जाने ते हो वर्ते जे सो आखे कोए, जिते सो वस्त न जापई आपे वर्तो जान, नानक गाहक क्यों लय थके न वस्त पछाण महला दूजा, तो क्यों अंधा आखिए जे हुक्म अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहिए सोए पौड़ी, तय अंदर गढ़ कोट है शब्द संतर देसा, आपे ताड़ी लाइन हमें परवेसा, आपे सृट साजियन आ गुप्त रखे सा, गुर सेवा ते जानिया सज प्रगटी ऐसा, सबके सचो सच है गुर सोजी पाई, वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, सामन रात आहार।

सौदा मूल ना हो भई, ना को लय ना दे, जिया का आहार जी खाना योग करे, वेचो पाए सायरा तिना पे सार करे, नानक चिंता मत करो, चिंता तेसरी हे महला पहला, नानक यो जीव मछली कीवर कृष्णा काल, मनुआ अंध ना चित पड़े अचिंता जाल, नानक चित अचेत है चिंता बद्धा जाए, नदर करे दे आपनी ता आपे लहे मिलाए पौड़ी, सेजन साचे सदा सदा जिन्नी हर्ष पीता, गुरमुख सच्चा मानव से सह सौदा कीता, सब कुछ कर ही माए है वड़ भागी लीता, अंतर तृष्णा मर गई हर गुण गावित, आपे मेल मलायन आपे दे बुझाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला पहला, वेल पंजाया कत उड़ाया, कट कुट कर खुंभ चढ़ाया, लोहा वड्डे दर्जी पाड़े सूई धागा सीवे, क्यों पद पाटी सिवती सीपे, नानक जीवत जीवे होए पुराना कपड़ पाटे, सूई धागा गंढे माओ पख क्यों चले नाही, कड़ी मोद किश हंडे कत पुराना होवे नाही, सीता कदे ना पाटे, नानक साहेब सचो सच्चा तित्यर जापी जापे महला पहला, सच की काती सच सब सार, ताड़त तसकी अपर अपार, सब दे सान रखा ही लाए, गुण की थे के विच समाए, तेदा कुठा होवे सेख, लोहू लब निकथा वेख, होए हलाल लगे हक जाए, नानक दार दीदार समाए। महला पहला, कामर कटारा बंकड़ा बंके का असवार, गर्बना की जे नानका मत सिरे आवे पार पौड़ी, सो सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच त्यायन से सच्चे जिन हर खर्च तन पल्ले, भगत सोन गुण गाम दे गुरमत अचले, रतन विचार मन वसया गुर के शब्द पले, आपे मेल मिलाएगा आपे दे वड्याई। श्लोक महला तीजा, आसा अंदर सब को होए निराशा होए, नानक जो मर जीवया सहला आया सोए, महला तीजा ना किश आसा हथ है क्यों निराशा होए, क्या करे ए बपड़ी जा फुलाए सोए पौड़ी, त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बेन, प्रवदाता दा तार नेचर यो तन, सास सास आराधे निर्मल सोए जान, अंतरजामी अगम रसना एक पान, रब रया सर्वत नानक बल जाई।

जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ, हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हो मैं रोग, नानक सतगुर तिना मिला।

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, फिर तेड़ा मन साधारण, दुर्जन से तीन हो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मद कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलिया, एक देव रात मुरारी, महला पंजवा, ताहि मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराध मन, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया तिन

ठगर ले आया साथ पे इको जेह सदगुर सराफ नदरी विच दो कड़े ता उगड़ आया लोहा बो तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आ।

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ, बुद्ध विपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी पाओ भक्त नहीं साधी रघाओ पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवागमन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखन की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही दीन दयाल के पाल दमुदर भगत बछल पै।

ले गगन मझारंग बेदियले चक्कर पुहंगा पेटियले राय निसंगा टूकियले मोह मयास सदकीनो सूर गेरास जाब कुंभक परपुर लीना ते बाजे अनहद बीना भगते बक शब्द सुनाया सुनते सुर मन बसाया कर करता उत सपारंग कहे कबीरा सारंग चंद सूरज दो ज्योत स्वरूप ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार।

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ न पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाओ न दरस, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पारस है ना परस, देव संसे गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रगा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नि समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहा नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहा नरंजन रमैया होए रगाओ, देव स्थाने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे ताश परम गुरदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाड पर आला, आले पीतर दाती, जागत रहे सो कहू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गह, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री

अगम अगोचर स्वामी जान जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बलले प्रखोत मुखर नाम जन गायो सब दाल दे दुख दलले विच देही दोख असाद पंच तातु हर की ये खिन परले हर की संत मन प्रीत लगाई जो देखे सस कमले उनवे कान कान कन हर गरजे मन विसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख घर मिले जन नानक हर अमल घर लाए हर मिलो अंध पले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुर प्रसाद दी हर नाम ते आयो हम सतगुर चरण पखे रखाओ उत्तम जगना जगदीशर हम पापी सरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सके जो चंदन संग बसे निम बिरखा गुण चंदन के बस खे हमरे अवगुण बिखिया बिखे के

पावन पित्र सब कीए, जे तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रव कह न सके हम, तुम वड़ वड़ पुरख वडगे, जन नानक को दया प्रवतारो, हम सेवो तुम जन पगे। नट महला चौथा। मेरे मन जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रतारी, मत गुरमत नाम बने रघाओ, हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुर सुने, केल भग पाप नाम हर काटे, जिव खेत किसान लुने, तुमरी उपमा तुम ही प्रव जान हो, हम कह न सके हर गुने, जैसे तुम तैसे प्रव तुम ही गुण जानो प्रव अपने, माया फास बंद बो बंदे, हर जप्यो खुल खुलने, ज्यो जल कुंचर तनुए बंदेओ, हर चेत्यो मोख मुखने, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम को जो जुग जुग ने, तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानक के प्रवड ने। नट महला चौथा। मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे, हर हर दयाल दया प्रतारी, लग सतगुर हर जपने रगाओ, हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावे हर उड़ने, जिनको तुमरे वड कटाख है, ते गुरमुख हर सिमरने, ए प्रपंच किया प्रस्वामी, साब जग जीवन जुगने, जो सलल है सरल उठे बहुलहरी, मिल सलल है सलल समणे, जो प्रो किया सो तुम ही जान हो, हम न जानी घर गहने, हम बार्क कहो विपुस्त तारो, हम करे प्रभु सिमरणे, तुम जलनिध हर मान सरोवर।

रखाओ। आज्ञा मान जान सुख पाया, तुन सुन नाम तुहारो जियो। ईगा ऊहा हर तुमगी यो गुरते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई ए बाता, ताब कुशल खेम सब तीयो। साध संग नानक परगासेओ।

सदगुर ज्ञान मज्जन गय नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गण उधारे परस निपरस फय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

सुनावे जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड गए साबत तब लग किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी कर कूप कडे पनगारे। सागत से मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन विश्वा जो डसिए तज सागत परे परारे। लग लग प्रीत बो प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद

साध हर समर्थ की सरना जीव पिंड तनरास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाइये जीवने का मूल रब रया सरबत ठाई सुख मु अस्तूल आल जाल विकार ता सब हर गुणा नित गाओ गजूड़ नानक दान मांगे देव अपना नाओ माली गौड़ा महल्ला पंजवां प्रभ समर्थ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किस अंत नाही पार।

सहज सुख होई, कर छड़ने रहे न कोई, किस खाजे किस तर जाइए, जे बहुड़ दुनिया आइए, सदकाया पट हंडाए, फुरमायस बहुत चलाए, करसे सुखाली सोवे, हथी पौंदी काहे रोवे, कर कुमण वाणी पाई, पा पत्थर तरन न जाई, बहु बेड़ा जी हो चढ़ाऊ, कहो नानक देवे काहू, मारू महला पहला कर पहला, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा पला दुए लेख पाए, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तौ गुण नाही अंत हरे, चित

बसत निर्मल जाल पद्मन जावल रे, पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे। दादर तू कभे न जान सरे, भगत सिबाल बसत निर्मल जाल अमृत ना लक्ष रे रगाओ। बस जाल नेतना वस्त अलियल मेर चाचा गुण रे, चंद कुमुदनी दूरो निवसस अनपो कारण रे। अमृत खंड दूध मस संचस तूब ना चातुर रे, अपना या तू कहू न छोड़स पिसन प्रीत जो रे। पंडित संग बसे जनमूरख आगम सास सुने, अपना आप तू कहू न छोड़स सुवान पूज्यो रे। एक पाखंडी नाम नारा चह एक हर हर चरणी रे, पूर्व लिखिया पाप स्नान रसना नाम जप रे। मारू महला पहला सलोक पतत पुनीत असंख हो गए, हर चरणी मन लाग अड़सर तीर्थ नाम प्रभ। नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बार।

ज्ञान इस नानी हर गुण पूजे पाति एको नाम एको नारायण ते पवन एका ज्योति जेवा डंडी ओकड़ शाबा तुलो नाम अजाची एको हाट साउ सबना सिर वणजारे एक पाती दोवे सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी जियो रहे ने प्राती शब्द विसाए परम चुकाए सदा सेक दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी गुर बचनी बार कर एको नानक पया उदासी राग मारू महला पहला कर पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद अहिंस जागे नींद न सोवे।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा परा किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहित है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बेनासी जुत्स पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना।

एक सच्चा सब सेवदी तुर पाग मिलावा होए। गुरमुख मेरे से ना विछड़े पावे सच सोए। एक भगती सार ना जाननी मनमुख परम भुलाए। ओ ना मितिया पवरतदा करना किसु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास। नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरहों कंचन होए। सो सच्चा सालाइए तिस जेवड़ अवर।

असाध रोग उपजो तन पीतर तरतन काहू टारियो प्रा बिसत महा दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए साचा सोए सुख पाया फिर।

माया कीमत जन्म सरायो, आराम भजन नहीं लागे ओ रखाओ। जम को डांड परे सिरे ऊपर, तब सोवत तय जागे हो, तां होत आपके पछताए, झूठ तो नाहन पागे हो। ए चिंता उपजी घट मैं, जब गुर चरणन अनरागे हो, सोफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु जस मैं पागे हो। मारू अष्टपदियां, महला पहला, कार पहला, एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, वेद पुराण कथे सुने, हारे मुनि अनेका, अड़सठ तीर्थ बहु कणा, प्रम था के पेखा, साचो साहिब निर्मलो।

को कछ नहीं, गुर पूरे पूरी मत कीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्नी नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागो पाए। गुरबिन दाता को नहीं, कीमत कहन न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साच पठायो लेख। मुख तिमाणे तन खड़ी, गुरमुख आखी देख। तुद पावे तू मन वसे, नदरी कर्म वसेख। भूख पिया सो जे पवे,

पूरे सावास है, काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है, भाणे बक्से पूरा तनी, सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लए, गुर को बल जाइए, लाले गोले मत खरी, गुर की मत निकी, ताती सुरत सुहावनी, मानमुख मत फीकी, मन तन तेरा तू प्रभु, सज तीरक तुरकी, सच बैसन उठना, सच भोजन पाखिया, चित सच्चे वितो सच्चा, साचा रह चाखिया, साचे कार साचे रखे, गुर बचन सुपाखिया, मनमुख आलस घणो, फाथे उजाड़ी, फाथा चुगे न चोगड़ी, लाग बंद बिगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त होए, साचे ने ताड़ी, अनहत लाला बिदया, प्रभगेत प्यारी, बिन साचे जियो जल बलो, झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया, साची तरतारी, जिन्नी नाम सारिया।

रगाओ, हे गुण विसर गए अपराधी, मैं बौरा क्या करो हरे, तू दाता दयाल सबे सेर, आहे निस दात सुमार करे, चार पदार्थ लय जग जन्मया, सिव शक्ति कर वास तरे, लागी भूख माया मुग जोग, मुग्ध पदार्थ मोए करे, कारण पलाव करे नहीं पावे, एत उद ढूंढत थाग परे, काम क्रो अंकार वे आपे, कूट कुटां से प्रीत करे, खावे पूगे सुन सुन दिख, पैर दिखावे काल करे, बिन गुरु शब्द न या पछाण है, बिन हर नाम ना काल टरे, जेता मोह में कर पूले, मेरी मेरी करते शीन करे, तान तन बिन सहसा, फिर पछतावे मुख तूर परे, बिरद पया जो बन तन खिसिया, काप कंठ बरुद्ध हो नयनो नीर टरे, चरण रहे कर कंपन लागे, साग त्राम न हृदय हरे, तुरत गई काली हूं तौले, इसे न पावे रखियो करे, विसरत नाम ऐसे दुख लाग गए, जाम मार सुमारे नरक खरे, पूर्व जन्म को लेख न मिटई, जन्म मरे का को दोष तरे, बिन गुर बाद जीवन हो मरना, बिन गुर शब्दे जन्म जरे, खुशी खुआर पैरस भोगण, भोगट कर्म विकार करे, नाम विसार लोभ मूर्ख होयो, सिर धर्म राय का दंड परे, गुरमुख राम नाम गुण गाव है, जा को हर पर नदर करे, ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे, ते जग में गुर गोविंद हरे, हर सिमरहो गुर भजन सुमारहो, संगत हर जन पाव करे, हर जन गुर प्रधान द्वारे, नानक तीन जन की रेन हरे, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, मारू काफी महला पहला, कर दूजा आवो वन्यो डुमणी।

तले उगाए बैसे हो, शरम ना रहे हो शरीर, मां सागर नए व्यापे किने उतरो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन ते संगे नहीं प्रीत, बिष्टा मूत्र खोद तेल तेल, मन ना मनी विपरीत, ऊच नीच विकार सुकृत, संग लगन सब सुख शत्र, मित्र सतर ना कशु जाने, सर्व जी समत कर प्रगास, प्रचंड प्रगटेओ अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है करण लागे, मन ना पयो विकात, सीत मंद सुगंध चलेओ, सर्व थान समान, जहां साक्ष तहां लागेओ, तिल ना संका मान, तो पाए अपहाए जो निटे आवे, सीत ताका जाए, आप पर का कश ना जाने, सदा सहज सुपाए, चरण सरण सनात्यो मान।

चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सदगुर प्रसाद चांदना चांदन आंगन परजीव अंतर चांदना आराधना आराधन नीका हर हर नाम आराधना त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ त्यागना मांगना मांगन नीका हर जस गुर ते मांग।

जाए। अन दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है। सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आ मिलया सबना का दाता। होमे मार तृष्णा अग्न निवारी, शब्द चीन सुख होई है। काया कुटंब मोह ना बूझे, गुरमुख होवे ताया की सूझे।

आपे बख्श लए सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई हे। दुर्म झूठी बुरी बुरियार, औगुणियारी औगुणियार, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुर्मत नाम न पाई हे। औगुणियारी कंत न पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, फिर का साओ न जाने मूर्ख, बिन गुर बूझ न पाई हे। दुर्मत खोटी खोट कमावे, सीगार करे फिर खसम न पावे, गुणवंती सदा फिर रावे, सदगुर मेल मिलाई हे। आपे हुम करे सा विख है, एक ना बख्श लए तुर लिख है, अन दिन नाम रते सद पाया, आपे मेल मिलाई हे। हौमे तात मोहरस लाई, गुरमुख लिव साची सहज सुमाई, आपे मिल है आपे कर विख है, बिन सदगुर बूझ न पाई हे। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किशु न जाई हे। काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उरतारे, सदगुर सेवा ते सुख पाया, हर के नाम समाई हे। दूजे पाए फिरे देवानी, माया मोहे दुख माए समानी, बहुते पेख करे नहीं पाए, बिन सदगुरु सुख ना पाई है।

गुण में गुणी समाया, ए जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदे वसाई, कीमत कौन करे प्रा तेरी, तू आपे सहज सुमा।

तिनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा, इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा बिसरे नाही, आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी, तान मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे सास सवारे, सास ग्रास समाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही, आड़ पैर हर रख मन माही, सास संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुगनौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मेरे साधु स्वामी रावणा, सास्त सिमरत वेद वकाणी, जन्म पदार्थ जीत पुराणी, ताम क्रोध निंदा पर हरिये, हरसना नानक गावना, जिस रूपना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती, जो जो जपे सो ही वडभागी, बौड़ना जो नी पावना, जिसनु बिसरे पुरख बिराता, जलता फिरे रहे निताता, अकिरत कणे कौ रखे न कोई, नरक कोर में पावना, जियो प्राण तन तन दिन साजया, माद गर्भ में रख निवाजया, तेस्यों प्रीत शाड़ अनराता, काहू सिरे न लावना, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, कड़ कड़ वसे सबन के नेरे, हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जनाए तिसे जनामना, जाके मस्तक तुर लिख पाया, तेसी पुरख न व्यापे माया, नानक दास सदा शरणाई, दूसर रवे ना लावना, आज्ञा दूसू सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने, ताकि कीमत कहण न जाई, जगत ओई समावना, तोई भगत सोई वड़दाता, तोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तेल नहीं बदे कटे ना कटाए, सोई हुए जे करते पावे, कह के आव न्यामना, अंध कूबते से ही काढे, जन्म जन्म के टूटे गंडे, कृपा तारखे कर अपने, मेरे साधु गोविंद त्यामना, तेरी कीमत कहण न जाई, अचरत रूप वड्डी वड्याई, भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जामना, मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला पहला, वेण गाहक गुण वेतिए, तौ गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले, तौ गुण लाख वकाए, गुण ते गुण मिल पाईए, जे सतगुर माए सुमाए, मोल अमोल ना पाईए, वणजना लीजे हाट, नानक पूरा

जगत ना चुर हीड़े सच चौ नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्सो हर नाम समाने आपे भगती लाए ओन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोने सचे दर जाने आयथे उथे मुक्त है जिन राम पछाणे तन तन से जन जिन हर सेवया तिन हो कुरबाने सलोक महला पहला मैल कुचजी मरवड़ी काली मनो कसुद्ध जे गुण होवन ता पिर रवे नानक अवगुण मुंद महला पहला साज सील सब संजमी सब पूरी परवार नानक ऐन सदा भली फिर कह गेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निदान पाया कृपा करके अपनी गुर शब्द मिलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर चनी चाखिया अनस ठाकर खाया हर पी सदा तृप्त भये फिर तृष्णा भुख गवाया सलोक महला तीजा फिर खुशगे तन राविगे तन उर नाम सिगार नानक तन आगे खड़ी थोबावंती नार महला पहला ससरे पेगे कंत की कंत अगम अथाहो नानक तन सुहागणी जो भावे वे प्रवाह पौड़ी तख्त राजा सोभ है जे तख्ते लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से ही ए भूपत राजे ना आखिए दूजे पाए दुख होई कीता क्या सालाइए जे जांदे बिलम ना होई निचल सच्चा एक है गुरमुख बूझे तो निचल होई सलोक मोहल्ला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाग नानक से सोहागणी जे सदगुर माए सुमागे मोहल्ला तीजा मन के अधिक तरंग क्यों दर साहिब छुटिए जे राते सच रंग गूढ़े रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुटिए जे

ईश्वर एक है, एको फूल पे रंग पौड़ी, जोजन लूजे मने स्यो से सूरे प्रधाना, हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप शाना, ज्ञानिया का यो महत है मन माये समाना, हर जीव का महल पाया सच लाए ते आना, जिन गुर प्रसादी मन जीतया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा धर कर भिख्या ले, दरगह लेखा मंगिए केस किस उत्तर देओ, भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है।

पेशतवंत जति सती प्रव निर्मला मेरे हर भगवंत सा ब्रह्म प्रसार पसारयो आपेखे लंत एहो आवा गमन रचायो कर चोज देखंत इस भौड़ गर्भ ना पावगी जे देवे गुरमंत जो आप चलावे त्यों चल दे केश वस ना जनता डखणे महला पंजवा कुरिये वैद्या तल गाड़ा महरेर वेखे छिटड़ थीवंदो जाम खिसंदो पेर महला पंजवा सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक आथड़ी मंज।

जान ही दुर्जन सेती ने हो तू कै गुण हरंग मान ही महला पंजवा नानक जिस दिन कड़ी ना जीवना विसरे सरे ना बिंद तेस स्यो क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद महला पंजवा रत्ते रंग पार ब्रह्म कै मन तन अत गुलाल नानक विण नावे आलू दया जिती होर ख्याल पवड़ी हर जियो जां तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुर पौजल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती सब

कर हीड़े हिक आधार त्यो संतन की रेण जित लभी सुखदा तार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाई है बिन सदगुर मनुमा ना लगे धर्म तीरा कल अंदर है त्यो पापी मूल न तग ऐ कर करे सो ऐ कर पाए एक कड़ी मोहत ना लगे चारे जुग में सोदया विण संगत अंकार ना पगे होमे मूल ना छुटई विण साधु सत्संग तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन पंग जिन जान गुरमुख सेवया इस कर दी बाण अपगे हर कृपा ते सुख पाया गोर सतगुर चरणी लगे डखणे महला पंजवां लोड़िंदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर हठ मजाऊ सोतणी चौदो मुख अलाए महला पंजवां माणकू मोय माओ डिणना तणी अपाह हियाओ मिंजा ठंडड़ा मुखों सच अलाए।

मैं लख वड़ते साहेब जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे उड़ना साइया मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मलाइया मन अर्प्यो हो मैं तजो इत पंथ जुलाइया नित सेव्यो साहेब अपना सत संग मिलाइया सबे आसा पूरिया गुरमैल बुलाइया तुद जेवड़ होर ना सुझई मेरे मित्र गुसाइया।

देख परम ते पुल श्री भगवान ना जानिया तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया खीर समान साग मैं पाया गुण गावत रहन बेखानी कबीर को ठाकुर अंध बिनोदी जात ना काहू की मानी श्लोक कबीर गगन दमामा बाजेओ परयो निशाने काओ खेत जो मांडेओ सूरमा अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छड़े खेत कबीर का शब्द अराग मारू बाणी नाम देव जी की एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद प्यार मुक्त चारे सिद्ध मिलके दूल्हे प्रभु की शरण परयो मुक्त पयो चहूं जुग जानियो जस कीर्त माथे छत्र तरयो राजा राम जबत को ना तरयो गुर उपदेश साध की संगत भगत भगत ताको नाम परयो अरहाओ संख चक्र माला तिलक बेराज देख प्रताप जम डरयो निरपो पय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हेरयो अमरीक को दियो अपय पद राज पपीखन अदक करयो नौनिद ठाकुर दई सुदामे त्रू अटल अजहू ना टरयो भगत हेत मारयो हरण अक्ष नरसिंह रूप होय दे तरयो नामा कहे भगत बस केशव अजहू बल के द्वार करो मारू कबीर जियो दीन बसार्यो रे देवाने दीन बसार्यो रे पेड़ परयो पशुआ ज्यो सोयो मनुख जन्म गए हार्यो रखाओ साध संगत कभू नहीं किन्नी अरचो तंदे झूठ स्वान सुकर बास जमे भड़कत चल।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छदर तरे रखाओ जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे नीचे ऊच करे मेरा गोविंद। काहू ते ना डरे नाम देव कबीर तलोचन, सदना सहन तरे तय रविदास सुनो रे संतो। हर जीव ते सवे सरे मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते भजा के रे चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध। नवृद कर तलता के हर हर ना जब सरसना, अवर सब शाढ़ बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद वेद चौतीस अक्षर माही, ब्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही। सहज समाध उपात रहत होए बड़े पागल लागी, कहे रविदास उदास दास मत। जन्म मरण पै भागी तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सुखमा देसो तू पला। हर जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा। प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा। रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले सातन, तू सुन आत्म रामा। बाबी गा प्रियो बोले कोकल बाणिया, सातन सबरस चोले अंक सुमाणिया। हर अंक सुमाणी जा प्रपाणी, सा सुहागण नारे। नव कर थाप महल कर ऊचो, निज कर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निस बसर रंग रावे। नानक प्रयो प्रोचवे बबीह, कोकल शब्द सुहावे। तू सुन हरस पिन्ने प्रीतम अपने, मन तन रव तरवन्ने। कड़ी ना बिसरे क्यों कड़ी बिसारी, हों बलिहारी हों जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हों किस केरा, हार बिन रहन ना जाए। ओढ़ गई हर चरण निवासे, पाए पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावे, गुर शब्दी मन तीरा। बसे अमृत तार बूंद सुहावनी, साजिन मेरे सहज सुपाए। हर स्यों प्रीत बनी, हर मंदर आवे जा प्रभावे। तन ऊबी गुण सारी, कर कर कंतर वे सुहागण। हों क्यों कंतव सारी, कुन कन शाए बरस सुपाए। मंतन प्रेम सुखावे, नानक वरसे अमृत बाणी। कर कृपा कर आवे, चेत बसंत फला पावर सुहावड़े। बन फूले मंज बार।

पर सुजान विधाता चंचल जगत सुबाया ज्ञान ध्यान गुण अंक समाने प्रापाने ता पाया गीत नाद कवत कवे सुन राम नाम दुख पग नानक सा तन ना प्यारी अब भगती पिर अग ओह तुखार पड़े वाण त्रैण रस सुख आपत की नाही मन तन वसै मुखे मन तन रब रहया जग जीवन गुर शब्दी रंग माणी अंडज जेरज सेतज उदपुज कड़कड़ जोत समाणी दर्शन देहो दया।

पूर रहया। सेप जन सेवे ते परवान, जिन सेव्या गुरमत हरे, तिनके कोट सा पाप, खेन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दोग सा बिनसे। जिन मन चित एक आराध्या, तिनका जन्म सबलु सब किया करते, जिन गुरभजनी सच पाखिया, ते तन जानवर पुरख पूरे, जो गुरमत हर जाप पौ बिखमत तारे। सेवक जन सेवे ते परवान, जिन सेव्या गुरमत हरे, तू अंतर जामी हर आप, ज्यों तू चलावे प्यारे, हाँ तिवे चला, हमरे हाथ किश नाहे, जा तू मिले, ताहों आए मिला, जिनको तू हर मिले स्वामी, सब तिनका लेखा छुड़क गया, तिनकी गणतन करे ओ को पाई, जो

जिनको तुरहर लिखिया स्वामी, तिन हर हर नाम आराध्या, तिन के पाप एक निम्क सब लाते, जिन गुरबचनी हर जापया, तन तन ते जान, जिन हर नाम जपया,

पंथ चले गोर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होआ हवर पई संसार आए त्रै लोआ देखण आए तीन लोक थुर नर मुनजन सब आया जिन परसया गोर सतगुरु पूरा तिन के किलबिख नास गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी।

पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ राख हो किरपाल रखाओ अनक जतन गमन करो खड़ कर्म जुत ध्यान करो उपाव सगल कर हारियो नह उठे बिकराल सरन बंदन करना पते पाव हरण हर हर हर हर एक तू ही दीन दयाल प्रभ चरण नानक आसरो उदरे प्रमो सागर।

आराम बसार हो गए अभमान कनक कामनी मां सुंदरी पेख पेख सच मान रखाओ लालच झूठ विकार महामत।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध को ममता, कठिन पीर अद पारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, शब्द सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मनमुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स।

मुक्त नाम गुरमुख लहे, राम ना बेन बिरथे जग जन्मा, बिख खावे बिख बोली बोले, बिन नावे निफल मन भ्रमना रखाओ, पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे, संध्या कर्म तिकाल करे, बिन गुर शब्द मुक्त खां प्राणी, राम ना बेन उर्ज मरे, दंड कमंडल शिखा सूद तोती, तीर्थ गमन अद भ्रमण करे, राम ना बिन सांत न आवे, जप हर हर नाम तो पार परे, जटा मुगट तन पसम लगाई, बत्र छोड़ तन नगन पया, राम ना बिन तृप्त न आवे, किरत के बंधे भेख पया, जेते जी जंत जल थल महियल, जतर कतर तू सर्व जिया, गुर प्रसाद राख।

अवगुण शब्द जलाए, जिन मन वसिया से जन सोहे, हृदय नाम मुसाए, कार दर महल सदगुरु दिखाया, रंग सिवर लिया माने।

थी त गोविंद जन्मा सी परम भूले नरकर्त कचरायण जन्म मरण ते रहत नारायण रघाओ कर पंजीर खवायो चोर ओ जन्म न मरे रे साकत टोर सगल पराध देह लो रोनी सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी जन्म न मरे न आवे ना जाए नानक का प्रभ रहो सुमाए पैरो मोहल्ला पंजवा उठत सुखिया बैठ सुखिया पाओ नहीं लागे जा ऐसे बुजिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रगाओ तोय अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रा तू वरसंता कर सुख वसया बार।

अरहो अराम रसायन नित उड पीवो हारगार हारगार रसना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार पैरों महला पंजवा सदगुर सेव सर्व फल पाए।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साग सड़गी चूरे।

मन प्रगट पया नाम लए पावतन ते गया नाम लए सगल पुरबाया नाम लए अड़सठ मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुर उपदेशा तत् ज्ञान रखाओ नाम लए दुख दूर पराना नाम लए आत मूढ़ सो ज्ञान।

कोट अगा मिटे हर नाम ते सरना इसदा सुख होए कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ जाके करतब लखे ना जाहे जाका परवासा सब कड़माहे प्रगट भया साध।

राम नाम रिद्ध दियो निवास, सदा आनंद नाही किज सोग, दुख दर्द न व्यापे रोग, सबके तेरा तू करने हार, पार ब्रह्म अगुण अपार, निर्मल शोभा अचरज बाणी, पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी, जल थल महील रविया सोए, नानक सब जो प्रवते होए, भैरो महला पंजवा, मन तारा तारा राम रंग चरणे, सर्व मनोरथ पूर्ण करने, आठ पैर गावत भगवंत, सगुर दीनो पूरा मंत, सोवड़ भागी जिस नाम प्यार, तिसके संग तरे संसार, रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक, सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरे स्वामी, सो पतवंता जे आप शानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रहन ते आया, टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरण हृदमाय निवासा, कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा, सो जन आया प्रभ की सरना, आप वित पाम सब कीने, राम रसायन रसना।

ब्रह्म का निवास, तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाओ विर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाओ मेरे बंतप नाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए सगाई।

आए। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना। अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे जब ही

राख रह माना सब कोई चलन कहत है ऊहां ना जानू बैकुंठ है कहां अरहाओ आप आपका मर मन जाना बातन ही बैकुंठ बखाना जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग ना ही चरण।

अर्ध उर्ध मुगला गोकास तुंड मंडल में कर परगास ऊगा सूरज नाही चंद आद निरंजन करे आनंद सो ब्रह्मंड पिंड सुजान मान सरोवर कर स्नान सो हं

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरी परमे नाम दियो इहो करना अंत रूप तेरे नारायण पर धन पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी

परमत नाम दियो नाटे बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाए नामे दुई आनी दूध पियो गोविंद राए दूध पियो मेरो मन पति आए नहीं ता कर को बाप रसाए रहाओ सोन कटोरी अमृत भरी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हिरदे बसे नामे देख नारायण हस्ते दूध पियाए भगत कर गया नामे घर का दर्शन पया।

भगत जिना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखा बंद जल सेती काज, जैसी मूड़।

पाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा अगर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजाएला गरड़ चढ़े गोविंद आएला आपने।

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेव रंगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे।

पावे, सदा शुभ शरीर पाणे चित लावे, अपना प्रसेवे सहज सुपाए, नानक नाम से मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुर पाए, सफलो बिरख हर के द्वार, सची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया।

पद खोए साचा सेवो साची बाणी नानक नामे साच सुवाणी बसंत महला तीजा बिन करमा तब परम भुलाई माया मोहे बहुत दुख पाई मनुख अंधे ठौर न पाई बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माए सुमाई हुकम मन्ने सु जन परवान गुर के शब्द नाम निशान अरहाओ साजरते जिना तुर लिख पाया हर का नाम सदा मन पाया सतगुर की बाण।

गुर शब्दी हर चेत सुभाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम सांत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए, काल

अरहाओ गुर प्रसाद लागे नाम स्वाद, काहे जन्म गवाब हो वैरवाद, गुर कृपा कीनी चूका अवमान। सहज पाए पाया हर नाम, उत्तम ऊंचा शब्द काम, नानक वखाणे साच नाम, बसंत महला तीजा। बनसत मौली चढ़िया बसंत, यो मन मौलिया सतगुरु संग, तुम साज त्यावो।

आमना रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी सब गुरु मेरे ता खोजिए मेरे ज्योति ज्योत सुबानी माधो साधु जन देव मिलाए देखत दर्श पाप सब नस पवित्र परम पद पाए रघाओ पंच चोर मेरे लागे नगरिया राम नाम तन हिरिया गुरमत खोज परे तप करे तन साबत रास उबरिया पाखंड परम उपाप कर थाके अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पद पाया अज्ञान अंधेर गवाया जगन्नाथ जगदीश गुसाई कर कृपा साध मिलावे नानक सांत होवे मन अंतर नित हिरदे हर गुण गावे बसंत महला चौथा हिंडोल तुम वड़ पुरख वड़ अगम गुसाई हम कीरे किरम तुमन से हर दीन दयाल करो प्रभु कृपा गुर सदगुर चरण हम बनछे गोविंद जीओ सद संगत मेल कर कृपशे जन्म जन्म के किल बिकमल भरिया मिर संगत कर प्रभ हंस।

मुन्य सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हारस पुन्य रहाओ सत संगत साध दया कर मिलो शरणागत साधु पान्य हम डुबदे पाथर काढ़ लेहो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पान्य हर उस्त तारो अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लान्य हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विटो कुम वान्य जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देवो हर लान्य जन नानक मन तन अंध पया है गुर मंत्र दियो हर पान्य बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुके एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद।

प्रभु देहे साध संगत में यो विश्राम सदा हृदय जपी प्रभ तेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ मैं समाहे।

काट काट रया समाय, जाके भगत आनंदमय, जाके भगत को नाही खै, जाके भगत को नाही पै, जाके भगत को सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रवरयो समाय, नानक जाचे एक दान, कर कृपा मुझे देहो नाम। बसंत मोहल्ला पंजवां, मिल पानी ज्यों हरे बूट, साध संगत त्यों होमे छूट, जैसी दासे तीर मीर, तैसे उदाहरण गुरे पीर, तुम दाते प्रभ देनहार, नेमख नेमख इस नमस्कार, अरहाओ जिसे प्राप्त साध संग, हे जन लागा पार ब्रह्म रंग, ते बंधन ते पय मुक्त, भगत आराधे जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक, तिसना बूझ

साधु संगत गुरे बताई ऊहा जपिए केवल नाम। साधु संगत पार ग्राम सगल तत् में तत् ज्ञान। सर्व ध्यान में एक ध्यान हर कीर्तन में उत्तम तुना। नानक गुरमिल गाए गुना बसंत महला पंजवा। जिस बोलत मुख पवित होए जे सिमरत

तेरा दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभ दयाल अपने दास को नदर निहाल कार कृपा मुझे देहो दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत महला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना सो सदा संग रहाओ संत जनी किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद खड़ खड़ पछान हर कीर्तन रस पूग रंग मन पाप करत तू सदा संग।

दान तेरिया संत जिना की बाशो तूर। जप नानक स्वामी सद हजूर, बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा। गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप। जाके सिमरन नहीं संताप, खसम त्याई एक मन एक पाप।

प्रकाट मैल निर्मल करे, गुरपूरे की सरणी परे आप करे आप करने हारे, तर कृपा नानक उधारे बसंत महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख फूल फूल फूले, अंग त्याग त्यागे चरण कमल पागे, तो मिलो प्रस भागे हर चेत मन मेरे, अरहाओ सगन बाज कूले। एक रह सूख कठूले बसंत रुत आई, प्रफूलता रहे अब करू आयो रे, एक नाम बोवहो बोवहो अनरूत नाही नाही

एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इन विद पासा ढलो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती। अंत काल नै लागे पीर रखाओ, कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो। सत करो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो। ऐसी खेल घर प्यारी, उठ स्नान करो प्रभाते। सोए घर आराधे, बिखड़े दाओ लंघावे। मेरा सदगुर सुख सहज सेती कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया। जन नान गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया। बसंत महला पंजवां हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जान है, और ना दूजा जाने। जिसनू कृपा करे मेरे प्यारे, सोई तुदे पछाण।

कज बिगड़ो नाहन अजहो जाग रहाओ। सब सुपने कै यो जग जान बिन से शिन में साची मान संग तेरे हर बस्तनीत निज बासर पजताहे मीत बार अंत की होए सहाए कहो नानक गुणता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदिया कार पहला दो तुकियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद

गाशो पुत्री राज कुवार ना पण थज दोत सवार प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला।

मन पूलो समझ सब साच नाए, गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ। मन पूलो परमस पावर तार, बिल बिरथे चाहे बहु विकार, मैग जो फासस कामहार, कड़बंधन बाध्यो शीस मार, मन मुग्धो दादर भगत हीन, दर पलट सरापी नाम बीन, ताके जात न पाती नाम लीन, सब दुख सुखाई गुणे बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हरस राखे पत न साख, तू आपे सुरता आप राख, हर तारण देखे जाने आप, आप पुराए किस कहो जाए, गुर मिले बिरथा कहो माए, अब गुण छोड़ो गुण कमाए, गुर शब्दी राता सच समाए, सदगुर मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो में कड्डे तोए, सदा मुक्त बंधना सके कोए, सदा नाम खाने और न कोए, मन हर के पाने आवे जाए, सब में एको केश पहन न जाए, सबको वर्ते हुक्म सुमाए, दूसू सब तिसर जाए, तू अपुल ना पुलो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे,

तै लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना बीचारे कोए। एवद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा, अनक जन्म प्रमे जून माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत डंड, गोविंद पजो

काम क्रोध मन बस किया, सुपने नाम न हर लिया, कब ही राजा कब मंगन हार, दू सुख बांधो संसार, मन उदरण का साजना हे, पाबंदन नित पोत जागे, ईठ मीत को सखा नाहे, आ बीज आपे ही खाहे, जाके कीने होत बेकार, ते छोड़ चलिया खिण मैं गवार, माया मुए मोह भरमिया, किरतरे कर करमिया, करने हार।

देव जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, ए देही के अधिक काम। कह कबीर पज राम नाम, जो ए खसम है जाया, पूत बाब खेलाया, बिन श्रवणा खीर पिलाया। देखो लोगा कल को पाओ, सुत मुकलाई अपनी माओ, रहाओ पगा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नरपय सोवे, बिन बासन खीर बिलोवे, बिन अस्थन गऊ लवेरी, पैंडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट न पाई। कहो कबीर समझाई, प्रहलाद पठाए पढ़न साल, संग सखा बोलिए बाल, मोको का पढ़ावस आल जाल। मेरी पटिया लिख दियो श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे

काहे को न बगूतो मैं को आहे माधो दारन दुख सहयो ना जाए मेरो चबल बुद्ध स्यों कां बसा।

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे जहां जाएगे तय जल पखान तू पूर रहोगे।

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरै ना लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर था।

मेल सत संगत परम पद पाया आत्म राम रहया पर पूर रखाओ सतगुर संत मिले संत पाइये किल भगत दुख काटे सब दूर आत्म जोत पई प्रफुलत

तित ग्रे वाजे पंच शब्द वड़पाग मथोरा तेन जन के सब पाप गए सब दुख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तेन जन के हर मार कढे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु जगदीश जपो मन बचन कर्म हर हर आराधु हर के जन साधु हर राम बोल सब पाप गवादु नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जगदीशोरा मन इच्छे फल पावो सबे फल पावो धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर स्यो मिले हर भगत तोरा सारग महला चौथा जप मन माधो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ हरहाओ हर कट कटे कट बसता हर जल सदे हर बसता हर थान सनंतर बसता मैं हर देखन को चाओ कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मुए मार्ग दिखलावे तिस जन के हों मल मल थोमा पाओ हर जन को हर मिलया हर श्रद्धा ते मिलया गुरमुख हर मिलया मेरे मन तन आनंद पए मैं देखया हर राव जन नानक को कृपा पई हर की कृपा पई जगदीशर कृपा पई मैं अनदनो साध साध सदा हर जपया हर नाव सारग महला चौथा जप मन निरपो सत सत सदा सत निर्वैर अकाल मूर्त आजोनी संप

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी। जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान। ससृढ़ का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी। जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पीए तृप्तासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम। बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ। राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सत जगे। जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राए, सो जन राम नाम लिव लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जिना की पत राखे। वेत कलयुग अगे जन नानक का अंग किया, मेरे राम राय दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक जो जल की। सबल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक। भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी। तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत। निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे। तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक स्ते लाख लाख।

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहुविध उमकाई रखाओ, चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई, जतन करो तो मन नहीं पीरे को है रे संत मिलाई, जब तब संजम पूर्ण सब होम अर्पो सब सुख जाई, एक निमुख प्रेदर्श दिखावे इस संतन कहे बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई, मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरुख मिलाई, प्ररंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई, सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक कोर में उर्तव करता नेमक नेमक गुण गाही, अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुर्भाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही, कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परयो कुसुमाही, तर मराए जा पकस बगरे तो काल मुखा उड़ जागी, सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन्म बलिहारी जो अल्प रहे मन माही, सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिशरत होत मृतका गृह में रहन न पाई, रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई, करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई, जे प्रसाद मिल गए प्रभु।

चले तिनी सुख पाया, जिस गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे, तिन की तूर बांचे नित नानक, प्रा मेरा कृपा करे। सारग महला पंजवा, हर जन राम राम राम त्याए, एक पलक सुख साध समागम, कोड़ बैकुंठे पाए रघाव, दुलाभ दे जब होत पुनीता, जम की त्रास निवारे। महापत्ते पातक उतरे, हर नामा उतारे, जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा। को नानक पाइगे वडपागी, मन तन हुए बेगासा। सारग महला पंजवा, दो पदे कर चौथा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, मोहन कर आवहो करो जुदैया, मान करो अभिमान बोलो, पूर चूक तेरी प्रेत्रिया रघाओ, निकट सुनो अर पेखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाए पार दो, मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिस लख बरिया। साध संगत की पीर जो पाई, तो नानक हर संग मिरिया, सारग महला पनवा, अब क्या सोचो सोच बिसारी, करना सास ओई कर रहया, दे नाओ बलिहारी रखाओ, क्यों दिस फूल रही बिखिया बिख, गुरमंत्र मूख गरड़ारी। हाथ दे राख्यो करे अपना, ज्यों जल कमला अलपारी, हाओ नाही किश मैं क्या हुसा, तब तुम ही कल तारी। नानक पाग प्रयोगर पाछे, राग संत सदकारी, सारग महला पंजवा, आप मोहे सर्प पा बिरकाते, करण कारण स्मरत स्वामी, हर एक स्ते मेरी गाते रघाओ, देखे नाना रूप हो रंगा, अनना ही तुम पाते, दे आधार सर्व को ठाकुर, जी प्राण सुख दाते, प्रमतो प्रमतो हार जो परे हो, तो गुर मिल चरण पराते, कहो नानक मैं सर्व सुख पाया, ए सुख बेगा नहीं राते। सारग महला पंजवा, अब मोहे लभ देव है घर टेका, गुर दयाल पय सुखदाई, अंधले मानक देखा रखाओ, काटे अज्ञान तेमर निर्मलिया, बुद्ध विगास बबेका, ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है, सेव ठाकुर पय एका, जय ते उठ्यो तय ही आयो, सभी एक एका, नानक दृष्ट आयो सब ठाई, प्राण पति घर समका। सारग महला पंजवा, मेरा मान एक ही प्रेम मांगे, पेख आयो सब थान देश, प्रे रोम न समसर लागे, रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन, तेसो दृष्ट न करे रुचांगे, हरस चाहे प्रे प्रेम खुटेरे, ज्यो आल कमला लोभांगे, गुण निधान मनमोहन लालन, सुखदाई सरबांगे, गुर नानक प्रापाए पठायो, मिलो सखा गल लागे। सारग महला पंजवा, आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना, साध कृपाल दयाल पय है, यो छेद्यो दुष्ट बिगाना, रखाओ तुम ही सुंदर तुम्हे सियाने, तुम ही सुगर सुजाना, सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक, निमकन कीमत जाना, तुम ही नायक तुम्हे शत्र पात, तुम पूर रहे भगवाना, पावो दान संत सेवा, हर नानक सद कुरबाना।

कहो नानक मैं सहज कर पाया अर भगत भंडार खजीना सारग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है छुट्टे संघार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उधार है रघाव तेरे अरदास बहुत बेनती निमक निमक सामहार है हो कृपाल दीन दुख पंजन आ दे निस्तार क्या ए पूपत बपरे कही है कहो ए किसनू मार है राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुमार है सारग महला पंजवा आप मोहे तन पायो हर नामा पाए अचिंत तृष्ण सा बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रखाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दे गिरामा गुर कृपाल सौदा यो जोरियो हथ चिरियो लाल अगामा आन बापार बंज जो करिए तेते दुग सहामा गोविंद भजन के निरपय व्यापारी हरास नानक राम नामा सारग महला पंजवा मेरे मन निष्ठ लगे प्रे बोला गुर पां पगर प्रसे वाला सद दयाल हर टोला रघाओ प्रभ तू ठाकुर सरप्रद पालक मुए कलत्तर सहित सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं ओला ये तख्त बैसल है तो दास तुम्हारे कस बढ़ावे केतक भोला जन नानक के प्रापुरख विधाते मेरे ठाकुर अगे अतोला सारग महला पंजवा रसना राम कैत गुण सोहं एक निमक उपाय समावे देख चरत मन मोहं रघाओ जिस सुने मन होए रहस अत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बन आई प्रभ तोहं केलव गए मन निर्मल होई गए गुर काढे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रापाया करण कारण समर्थोहं सारग महला पंजवा नैनो देखो चलत तुमासा सबहु दूर सबहु ते नेर आगम आगम कटवासा रहाओ अपूल ना पूले लिखियो ना चलावे मता ना करे पचासा खिन में सा सुवार बिनाहे भगत वशल गुण तासा अंध कूब में दीप बलियो गुरदे कियो परगासा कहो नानक दर्श पेग सुख पाया ता पूर्ण होई आसा सारग महला पंजवा चरणे गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जेता जिताइए तेतो ही दुखवावा रहाओ नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे हस्त पुनीत तहलावा हृदय पुनीत हृदय घर बस्यो मस्त पुनीत संत तूरावा सर्वन दान नाम हर हर कहे जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कौ गुर पूरा पेट्यो सुख सहजे अनंद बिहावा सारग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जे माल पिता सु भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंध कूप गृह में तिन सिमरे हो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तू ही दिख अमृत नाम पिया मन तृप्तया आगाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा सारग महला पंजवा गुर मेल ऐसे प्रभु ते आया भयो कृपाल दयाल दुख पंजन लगे न ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते एते ही गुण गाया निमक न बिशरे करी न बिसरे

प्रभ मेरो एक पुत्र सदा सहाई, मनमोर मेरे जी को प्यारो, कमर कहां गुण गाई रहाओ। खेल खिलाए लाड लाड आवे, सदा सदा अनदाई, प्रद पाले बारक की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसर न कब हो जाई। कहो नानक मेल संत संगत ते, मगन पै लिवलाई, सारग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइये, आस न अवर कहू की कीजे, सुखदाता प्रत्याये रखाव, सुख मंगल कल्याण जिसे कर, तिस की सरणी पाइये, तिसे त्याग मानक जो सेव है, तो लाज लोन हो जाइये, एक ओट पकड़ी ठाकुर की, गुर मिल मत बुद पाइये।

जब भूखो तब भोजन मांगे हकाए सुख कनारे तब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटक तो हुए रवारे कवन बसेरो दा दासन को

दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करामन आपे कौ नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपूरे नमस्कारो रगाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई को नानक साज विचारो सारग महला पंजवा बेन प्रभ रहन न जाए करी सर्व सुख ताहू के पूर्ण जाके सुख हरी रगाओ मंगल रूप प्राण जीवन तान सिमरत अंध कना वड समर्थ सदा ससंगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा मान पवित्रा।

जाहु काहू अपनो ही चित आवे, जो काहू को चेरो होवत ठाकुर ही पै जावे रगाव। अपने पै दुख, अपने पै सुख, अपने ही पै बिरता, अपने पै मान, अपने पै ताना, अपने ही पै अर्था। किन ही राज जोबन तन मिलख, किन ही बाप मै तारी, सर्व थोक नानक गुर पाए पूर्ण आस हमारी। सार्ग मोहल्ला पंजवां। झूठो माया को मदमान, त्रो मोह दूर कर बपरे, संग गोपाले जान रगाओ, मिथ्या राज जोबन अर उमरे, मीर मलक अर खान, मिथ्या कापर सुगंध तराई।

दिवस चार के दिसे संगी, ऊहा नाही जय पारी, तिन स्यो राच माच हित लायो, जो काम नहीं गावारी, हो नाही नाही किश मेरा, ना हमरो बस चारी, करन करावन नान के प्रभ, तंतन संग उधारी, सारग महला पंजवा, मोनी मोहत रहे न होरी, साधक सिद्ध सगल की।

अंध कूप में पतत होत जग संतो करो परम गद मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

करो नित सेवा गुर अपना नमस्कारिया सर्व फला दीने गुर पूरे नानक गुर निस्तारिया सारग महला पंजवां सिमरत नाम प्राण गद पावे मिटे कलेस त्रा सब नस साध संग हित लावे रहाओ हर घर मन आराधे रसना हर जस गावे तज अवमान काम क्रुद निंदा बास देव रंग लावे दामोदर दयाल आराध हो

जाके सूद परोए जनता किस प्रभु का जस गाव हो। सिमर ठाकुर जिन सब खज दीना आन कहां पे जाओ, सबल सेवा स्वामी मेरे की मन बांच।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद अंध गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाया, सारग महला पंजवा, हर के नाम की गद ठंडी, वेद पुराण सिमर साधु जन, खोजत खोजत कांडी रहाओ, शिव ब्रांच अर इंद्र लोक, तामे जल तो फिरया, सिमर सिमर स्वामी पैसी तल, दुख दर्द प्रम गिरया, जो जो तरयो पुरातन नवतन, भगत पाए हर देवा, नानक की बेनंती प्रभ जियो, मिले संत जन सेवा, सारग महला पंजवा, जे वे अमृत गुण हर गाओ, हर हर बोल कथा सुन हर की, उचरो प्रभ को नाओ रगाओ, राम नाम रतन तन संचो, मन तन लाभो पावो, आन विभूत मिथ्या कर मानो, साचा ए सुवाओ, जी प्राण मुक्त को दाता, एक सस्यों लिवलाओ, कहो नानक ताकी शरणाई, देत सगल अपयाओ।

पंडित तो सूरा सोदाना, साध संग जिन हर घर जप्यो नानक सो परवाना। सारग मोहल्ला पंजवा, हर घर संत जिना की जीवन, बिखे रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन रखाओ। संचन राम नाम तन रतना, मन तन पीतर सीमन, हर रंग रंग पए मन लाला, राम नाम रस खीवन। जो मीना जल से उर जानो, राम नाम संग लीवन। नानक संत चातर्क की न्याई, हर बूंद पान सुख थीवन।

सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख ले हो दास अपने कहो सदा सदा कृपाल। सुख निदान नानक प्रा मेरा साध संग तन माल। सार्ग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

चितवो वा अवसर मन माहे होए एकत्र मिलो संत साजन गुण गोविंद नित गाहे रखाओ बिन घर भजन जेते काम करिए तेते बिरते जाहे पूर्ण परमानंद मन मीठो जिस बिन दूसर नाहे जप तप संजम कर्म सुख साधन तुलना कछुए लाहे चरण कमल नानक मन बेदेओ चरण संग सवाहे सार्ग मुहला पनवा मेरा प्रभु संगे अंतर जामी आगे कुशल पाछे खेम सूखा सिमरत नाम स्वामी रगाओ साजन मीत सखाहर मेरे गुण गोपाल कर राया बिसर न जाई निमक हृदय ते पूरे गुरु मिलाया कर कृपा राखे दास अपने जी जंत बस जाके एकाले पूर्ण परमेश्वर पौनी नानक ताके सार्ग महला पंजवा जाके राम को बल होए सगल मनोरथ पूर्ण ताहू के दुख न व्यापे कोए रहाओ जो जन भगत दास निज प्रभ का हुन जीवा ते सोए उद्म करो दर्शन पेखन को कर्म प्राप्त होए गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर ना ही कोए दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए।

मान तन धन तब तुमरा स्वामी आन न दूजी जाए। ज्यो तू राखे तिवखी रहना तुमरा पहने खाए, साध संगत के बल बल जाई।

शरीर सब हुट्यो, सास गयो तत घाट रहाओ, अनास रियान उधरले पुखे माया गईया हाट। तेल भग करत करत पुछतावे, कभू न साके शांत, निंदक जमदूती आए संगारेओ, देवे मूंड ऊपर मटाक। नानक आपन कटारी आपस को लाई, मन अपना कीनू फाट, सारग मोहल्ला पंजवा टूटी, निंदक की अद बीच। जनका राखा आप स्वामी, बेमुख को आए पहुंची मीच। रहाओ उसका कहया कोई न सुनई,

दर्शन पेख मेरा मन मोयो, दुर्मत जात बही रगाऊ, आगे अगाध ऊच अबनासी, कीमत जात ना कही। जल थल पेख पेख मन बिकस्यो, पूर रहो सर्व मही, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मेरे साधे की नो सही। सेमर सेमर जीवत हर नानक, जम की पीर ना फही, सारग महला पनवा मायरी, मन मेरो मतवारो। पेख दयाल अंध सुख पूरन, हर रस रप्यो खुमारो रगाओ, निर्मल पै उजल जस गावत, बौर न होवत कारो। चरण कम सिउं डोरी राची, भेट्यो पुरख अपारो, कर गए लीने सर्बस दीने, दीपक पयो उजारो। नानक नाम रसक बैरागी, कोले समूहा तारो, तारग महला पंजवा मायरी, आन सिमर मर जाहे। प्या गोविंद जीन को दाता, माया संग लपटाहे रगाओ, नाम सार चले अन मार्ग, नरक कोर में पाहे। अनक सजाई गणतन आवे, गर्भ गर्भ परमाहे, से तनवंते से पतवंते, हर

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढ़े साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

बिंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रखाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम, जा कर हृदय वसे पए भंजन ते जान।

अनद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो नेह हो रहाओ। प्यार कुंट दहदिस जल निध ऊन थाओ ना के हो, कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो। सत सत हर सत स्वामी

पौर जोन ना पाए, पए कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग। हर चरण रास नानक पाई लगा प्रसो रंग, सारग महला पनवा माई री पेख रही बिस्माद। अनह तुनी मेरा मन मोयो अचरज ताके स्वाद रहाओ, माद पिता बंद पगे सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुण गोविंद बिन सो सब प्रमाद।

मोह मद मातो सिमरत ना गे हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

गाय बिनसी सब अवमानी रगाओ तार अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्व सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन सस दा सुहागन तेज साई जानी प्रे रंग रंग रति नारायण नांग तिस कुरबानी सार्ग महला पंजवा तो चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साग तुम्हें संग राखन हार तुम्हें जगदीश रखाओ तू हमरो हम तुमरे कहिए एत उत तुम ही राखे तू बेअंत अपरंपर स्वामी पुर कृपा कोई लाखे बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जाको मेल लय प्रभ नानक सेजन दर गए माने सारंग महला पंजवा चौपदे कर पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर भज आन कर्म विकार मान मोह न बुझ तृष्णा काल ग्रह संसार गाओ खात पीवत हस्त सोवत औद बीति असार नरक उधर प्रमंत जल तो जमे की निसार पर द्रोह करत विकार निंदा पाप रत कर चार बिना सदगुर बूझ नाही तम हो महा अंधार बेट खोई खाए मुठो कितना सिरजनहार गोविंद गुप्त हो रहे न्यारो मातंग मत अंकार कर कृपा प्रसंत रखे चरण कमल आधार कर जोर नानक शरण आयो गोपाल पुरख अपार सारग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सदगुर प्रसाद शुभ वचन बोल गुण अमोर किंकरी विकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती महा केल रगाओ सुपनरी संसार मितनी विस्तार सखी काए मोहे मोहे ली प्रे प्रीत हृदय मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए जो साध संग पाए कौ नानक हर त्याए अब रहे जमे मेल सारग महला पंजवा कंचना बो दत करा होम दान अर्प तरा मन अनक सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रगाओ चार वेद जेब पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे परत संद सोच चार किरिया कुंट निराहार।